नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 16 सितंबर 2026, दिन बुधवार, भद्रपदा शुक्ल पक्ष पंचमी, 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर।

एक तरफ विकास की ऊंचाइयां हैं तो दूसरी तरफ पिछड़ेपन की। इस तरह से इंसान का चरित्र जानवरों से भी नीचे दर्जे वाला बन गया है। महापुरुष समझते हैं कि तू इंसानी चाल तो चल ले, फिर तेरे आगे बढ़ना, विकास करना

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3। पेश करेंगे RJ किरणी।

FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता सुन रहे हैं आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं किरणी आपके साथ सुपर हिट पुराने गानों की प्लेलिस्ट के साथ प्रोग्राम रेट्रो हिट्स में। आज के प्रोग्राम का टाइटल है चांद और आज आपको मैं सुनाती हूं चांद पर आधारित गाने जो आज भी उतने ही खूबसूरत और हर दिल अजीज हैं। चांद धीरे से मुस्कुराया है, चांद को कौन याद आया है।

0: चांदनी रात में चांद तेरे चेहरे से जलवा दिखाता है, सितारों के जहां सारा उसकी रोशनी में चमकता है।
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: दिन में चैन नहीं ना होश है, रात में खो गया है चांद भी, देखो बादल के आगोश में।

कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पे शबाब का रंग गहरा है। खुदा को यकीन ना था वफा पे, तभी चांद पे तारों का पहरा है।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप हमें जरूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7056413010 और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3, पेश किया आरजे किरने ने। रिकॉर्ड, एडिट और निर्देशन रहा भारत सोपोरी का। ये थी एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
0: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

दिल से मेरे लहरे उठे ठंडे पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के दमन।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
2: जोधवा श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
2: गणपति बप्पा मोरिया।

लघु कथाओं की श्रृंखला में आइए आज एक और प्रस्तुति लेकर आए हैं। आपको तो पता ही होगा कि आप सुन रहे हैं रेडियो दस्ता हम सफर जिंदगी का 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। आइए सुनते हैं आज की एक नई प्रस्तुति, थोड़ी अलग हटके, उन दोस्तों के लिए जो नारी शक्ति को कहीं ना कहीं कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन नारी शक्ति वास्तव में कमजोर होती नहीं है। साहब, वाइफ ने हस्बैंड को मैसेज किया कि ऑफिस से लौटते सब्जी लेते आना, और हाँ पड़ोसन ने तुम्हारे लिए हेलो कहा है। कौन सी पड़ोसन? अरे कोई नहीं, मैंने केवल इसलिए मैसेज के अंत में पड़ोसन का नाम लिख दिया ताकि श्योर हो सकूं कि तुमने मेरा पूरा मैसेज पढ़ लिया है। बात यहां खत्म नहीं, यहां शुरू होती है। हस्बैंड ने भी मैसेज दिया अपनी पत्नी को, लेकिन मैं तो खुद पड़ोसन के साथ हूं, तुम किस पड़ोसन की बात कर रही थी? हैं? कहां हो तुम? हस्बैंड ने कहा सब्जी बाजार के पास हूं, तुम वहीं रुको, मैं आती हूं वहीं पे अभी। 10 मिनट में सब्जी बाजार पहुंचकर वाइफ ने हस्बैंड को मैसेज किया, अब बताओ कहां हो तुम? हस्बैंड ने कहा मैं तो ऑफिस में हूं, अब तुम्हें जो सब्जी खरीदनी हो खरीद लो। आप सोच रहे होंगे यहां से बात निपट गई, लेकिन निपटी नहीं, यहां से तो लिपट गई। और लिपटी भी कैसे? वाइफ ने गुस्से में पैर पटकते हुए मैसेज दिया कि मैं तो गुस्से में टेम्पो पकड़कर आ गई थी, मेरा तो पर्स भी घर पर ही रह गया है, सब्जी तो दूर, टेम्पो वाले का किराया भी कहां से चुकाऊं, प्लीज जहां पर भी हो जल्दी आ जाओ। पति ने कहा बेवकूफ, पर्स तो लेकर आना चाहिए था ना। ठीक है मैं आ रहा हूं, कहां हो? वाइफ ने जवाब दिया घर पर ही हूं। हाँ मेरी पसंद की सब्जी लेकर ना सीधे ही घर आ जाना। तो भाई बात कहने की है कि नारी से तो भगवान भी जीत नहीं पाए, आप और मैं तो चीज ही क्या है, राधे राधे राधे राधे।

जो दे गया फरेब, दे गया जख्मों की बारिश, फिर जिंदगी को संभाल न सके। आज मेरे मौसम जर्द हो गए।

और दौरानी सफर छूट गए मेरे यार, रास्ते गुम हो गए, इसीलिए शायद तुम हमारे ना हो सके। वक्त बेवक्त तुम याद आते रहे, मेरे अपनों की तरह तुम भी मेरी इबादत में शामिल रहे और मैं सजदों में तुम्ही से मुखातिब रहा, यूं ही।

0: उम्मीदों में कोई गुजरता है हर पल मेरे पास से, मेरे करीब से। धुंधला धुंधला चेहरा दिखाई देता है और चलने की आहट सुनाई देती है। इन पैरों को छूने की हल्की जुम्बिश महसूस होती है। कोई तो है जो सुनता है मेरे दर्द को।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी

थी पर रह गई अधूरी। हसरतों की मीनार दब गए सीनों में, अब पहले जैसे जज्बात कहां, पहले जैसी मुलाकातें कहां, पहले जैसा चांद भी तो अब कहां उगता है आकाश में। ना पहले जैसी तारों की बारात, उनकी टिमटिमाहट नजर आती है, और ना ही तुम्हारी जानिब से खुशबू मेरे पास से गुजरती है। अब रुक गए काफिले मोहब्बतों के, यूं ही तुम हमारी तन्हाई में याद आते रहे, शायद तुम भुला बैठे।

कोई आएगा, मेरा अतीत दोहराएगा, बीती बात याद दिलाएगा, मुझे खुद से मेरी पहचान कराएगा। मुद्दती हुई कोई ख्वाब में आया नहीं, शायद बरसों से मैं सोया नहीं, इंतजार में बीत गए साल साल। ख्वाब बनकर कोई आएगा, मेरा हाथ जरूर थामेगा, मुझे ले जाएगा, अपने साथ बिठाएगा अपने पास।

आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? फिल्मी गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे इजाजत। नमस्ते।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधारे हैं।
0: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो पप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 6। आज की फिल्म है काला पत्थर। कार्यक्रम पेश करेंगे राहुल अलियान। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान। लेकर आया हूं कार्यक्रम फिल्मी किस्से का एपिसोड 6 और पहली बार मेरी आवाज में। उम्मीद करता हूं आपको ये अंक अच्छा लगेगा। इस प्रोग्राम में हम बॉलीवुड की कोई मशहूर फिल्म का चयन करते हैं जिसके फिल्मी किस्से आपको सुनाते हैं और इसी फिल्म के गीत भी। आज हम बात करेंगे फिल्म काला पत्थर की। फिल्म काला पत्थर जो 1979 में बनी थी, जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था, हिंदी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, नीतू सिंह और प्रवीण बाबी जैसे बड़े सितारे थे। फिल्म की कहानी कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी और उनके संघर्षों पर आधारित थी। आइए सुनाता हूँ इसी फिल्म का एक मशहूर गीत, उसके बाद इसी फिल्म के फिल्मी किस्से भी। बने रहिए हमारे साथ।

अमिताभ बच्चन का किरदार विजय एक ऐसा इंसान था जो अपने अतीत के बोझ से जूझ रहा है। यह किरदार वास्तविक जीवन में चार सलाना खदान दुर्घटना जो 1975 में हुई थी से प्रेरित बताया गया था। इस घटना में सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई थी। फिल्म की कहानी उस दर्दनाक घटना और मजदूरों के जीवन संघर्षों को दिखाने की कोशिश करती है।

कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच असल जिंदगी में कुछ अनबन थी, लेकिन फिल्म के दौरान उन्होंने पेशेवर तरीके से काम किया। यह पहली बार नहीं था जब अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म में उनकी बॉन्डिंग को खास सराहा गया। सेट पर भी इनके बीच का दोस्ताना माहौल चर्चित रहा।

काला पत्थर एक आलोचनात्मक सफलता थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हालांकि समय के साथ इसे एक क्लासिक फिल्म माना गया। फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने असली कोयला खदानों का इस्तेमाल किया। शूटिंग धनबाद और आसपास के इलाकों में हुई, जिससे फिल्म को एक प्रमाणिक लुक मिला। कोयला खदानों में शूटिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वहां का माहौल बेहद कठिन था।

गाने उतने लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन इसके डायलॉग जैसे अमिताभ बच्चन का संवाद हमारे नाम से कोई बदनसीब जुड़ा है काफी मशहूर हुआ। फिल्म का संगीत राजेश रोशन ने दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार फिल्म की जान माना जाता है। उनके दमदार डायलॉग और अलग अंदाज दर्शकों को खूब भाया। कहा जाता है कि उनके किरदार को फिल्म में खास तौर पर जोड़ा गया ताकि मसाला एंटरटेनमेंट बढ़े।

काला पत्थर केवल एक ड्रामा फिल्म नहीं थी, यह मजदूरों की दुर्दशा और पूंजीपतियों के शोषण पर एक तीखी टिप्पणी भी थी। फिल्म ने समाज में मजदूर वर्ग की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। यह फिल्म आज भी उन दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती है जो समाज के जमीनी मुद्दों को सिनेमा के जरिए समझना पसंद करते हैं।

इसके साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ अगले एपिसोड में किसी और फिल्म के साथ। आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 705641300 पर, या आप मेल भी कर सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से और आज की फिल्म थी काला पत्थर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राहुल अलियान ने। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता 90.0 MHz ते। सुनते रहो अपने।

विशेष है कार्यक्रम, इनसे मिलिए। आज के मेहमान हैं अभिजीत शर्मा, प्रस्तुत करेंगे भारत सपोरी।

0: अभिजीत, आप ये बताइए कि इस छोटी सी उम्र में जब आपने गाना गाना शुरू कर दिया, क्या समझ आया आपको संगीत और गायन के बारे में? इस छोटी सी उम्र में आपके माता-पिता ने इस हुनर को कैसे देखा?
1: अंकल, जब मैंने स्टार्ट करा था गाना तो मैं 7 साल का था। मतलब जब सीखना शुरू करा तो पता ऐसे लगा कि जो मेरे टॉडलर्स में जो म्यूज़िक टीचर थे, तो एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्त हैं जितने छोटे छोटे जब दोस्त होते थे, तो वो मुझे लेकर गए कि मैम इसका गाना सुनो। तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने उन्हें शायद वो गाना सुनाया था, तुम ही हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने सुना तो वो बार बार मुझे बुलाते रहते थे कि आप तू गाना सुना मुझे वो वाला। तो मतलब लाइक उस टाइम मेरा वो सिग्नेचर सॉन्ग कहते थे, अभी भी मतलब बच्चों को याद है कि तू वो गाना सुनाता था। तो शिल्पा मैम थे, तो शिल्पा मैम ने फिर पापा मम्मा को कहा कि आप इसे ज़रूर सिखाइए। तो ऐसे पापा गाते हैं, भैया गाते हैं, सब गाते थे घर में तब। तो उसी टाइम फिर उन्होंने जब रीच आउट करा तो पापा मम्मा ने देखा कि हाँ ये गाता भी है। तो उसके बाद फिर मैंने सीखना शुरू करा धीरे धीरे। तो फिर ऐसे ही पता चल गया, टीचर्स ने मतलब सबसे पहले तो शिल्पा मैम ने बताया था कि आप इसे सिखाइए ज़रूर, ये कुछ ना कुछ कर सकता है आगे जाकर।
0: तो शिल्पा मैम को आप आज भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके इस संगीत के सफर में एक नींव रखी, मैं तो यही
1: जी
0: मानता हूँ। तो उनके लिए कुछ गुनगुनाइए, और वही गाना जो आपसे बार बार सुनते थे।

0: जी शिल्पा मैम, अगर आप ये कार्यक्रम सुन रही हैं तो ये अभिजीत ने आपके लिए ये डेडिकेट किया, क्योंकि टीचर जो हमारी होती है या हमारा होता है वही हमें सही रास्ता दिखा देता है या दिखा देती है। जैसे आपने, अभिजीत ने कहा कि इनके पेरेंट्स से बात की कि इनको आप संगीत सिखा दीजिए, और आपने बहुत बड़ा काम किया है जिससे आने वाले दिनों में हमारे देश को अभिजीत जैसा सिंगर मिलेगा। अभिजीत आगे चलते हैं, अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आपको हमने कई बार अंबाला में स्टेज पर गाते देखा है, कैराओके पर भी, ऑर्केस्ट्रा के साथ भी। कैसे समन्वय इन दोनों में आप करते हैं?
1: अंकल, मैं अभी 10th क्लास में पढ़ता हूँ, एंड कैराओके और लाइक जैसे म्यूजिक होता है, लाइव म्यूजिक, तो कैराओके का ये है, एक तो लाइक पूरा उसमें एक्यूरेसी अपनी एकदम बंद के चलना पड़ता है उससे। आप बिल्कुल खुला नहीं गा सकते, कोई आपको अगर अलग से अपनी हरकतें लेनी है, मुर्कियाँ लेनी है, तो आप वो नहीं कर सकते। एंड ऊपर से कैराओके मतलब ठीक है, एज अ प्रैक्टिस मटीरियल मुझे बहुत पसंद है, पर लाइव म्यूजिक में ये है, अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे छोटे मोटे, वैसे तो ये गाने ही आजकल के जैसे पुराने टाइम के रफ़ी जी के गाने हैं, तो उनमें तो चेंजेस करना बस क्या ही कर सकते हैं, वो तो पहले ही 5 महीने 4 महीने लग के पूरा स्कूल है एक गाना। पर जैसे कोई अलग गाना है और आप वो ऑर्केस्ट्रा में अगर आपने ज़रा सी भी मुर्की ली, तो एटलीस्ट उसमें म्यूज़िक का आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि अब तो म्यूजिशियंस हमारे अंबाला कैंट के एंड हर जगह के म्यूजिशियंस इतने एक्यूरेसी से बजाते हैं कि कैराओके से कुछ कम नहीं है उसमें, पर बस ये है कि आप लाइव म्यूजिक में थोड़ा कहते हैं ना कि अपने आप को दिखा सकते हैं, जितना अगर जितने आपने सीख लिया है तो वो आप अपने लाइव म्यूजिक में दिखा सकते हैं। कैराओके एज अ प्रैक्टिस मटीरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कैराओके पे वैसे अगर हम देखा जाए तो मुझे लाइव म्यूजिक पर्सनली बहुत ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि एक फील एंड ऑरा ही अलग होता है लाइव म्यूजिक का, तो ऐसे ऐसे कोप हो जाता है साथ में।
0: मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये ख्याल आता है, आपने ये कहा कि लाइव म्यूजिक में आपको अगर अपने तरह की कोई चेंज लेनी है या कोई मुर्की लेनी है उसमें, तो क्या आप उस बैंड को पहले एडवांस में कहते हैं या वो इंस्टेंटली बैंड भी आपके गायन को समझ लेता है?
1: अंकल, मुर्कियाँ तो एक ऐसी चीज़ है, वो सिर्फ ताल के साथ हम ले सकते हैं, तो वो तो ताल में हम ऐसे इंस्टेंटली ले सकते हैं। जैसे आपने कुछ थोड़ा ज़्यादा चेंज करना है, कभी कभी जैसे सिंगर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा सा कि मैंने अपना कुछ ये अलग से लाइन लगानी है या थोड़ा मुझे आलाप लेना है बीच में, तो वो हम उन्हें ऐसे प्रैक्टिस होती है रिहर्सल, तो उसमें बता सकते हैं कि मैं इधर आलाप लूँगा सर, तो ऐसे। जैसे एक बार मैं एक स्टेज पर गया था तो मैंने अंतरे से गाना उठाना था, तो मैंने उन्हें पहले बता दिया कि सर मैं अंतरे से उठाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप अंतरे से उठाना, तो ऐसे होता है।
0: तो आप हमें कोई ऐसी कोई गाना या कोई अंतरा हमें सुना सकते हैं जिसमें आपने अपने तरीके से कोई चेंज किया या मुर्की लिया या कोई बदलाव किया?
1: जी जरूर सुना सकता हूँ।

0: बहुत खूब अभिजीत, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस समय इस स्टूडियो में, अम्बाला कैंट के स्टूडियो में हमारे अम्बाला कैंट की ही शान अभिजीत हैं। और अभी आपका जो संगीत का सफर है वो अभी शुरू ही हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुर और ताल को आप कैसे हमारे श्रोताओं को समझा सकते हो?
1: अंकल, सुर होता है जैसे एक जैसे सारे का मापा है,
0: जी
1: तो उनमें ही अगर हम इंग्लिश में चलें तो सी मेजर, सी शार्प मेजर, डी मेजर, तो ऐसे ही पर्टिकुलर गानों के स्केल होते हैं। कोई गाना है जैसे जब कभी भी, तो ये सारे का मापा यहाँ से उठता है, तो अगर उसी गाने को हम थोड़ा किसी और सुर से उठा दें पर बज वो उस सुर पे रहे, तो उसे हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना किसी को कि ये बेसुरा हो गया, तो उसे हम ये कहते हैं। सुर पे वो होता है कि हम जिस सुर पे वो बज रहा है, लाइक हारमोनियम के सारे का मापा, जिस टोन में वो बज रहा है उस, तो उसे सुर कहते हैं। एंड ताल तो एक पर्टिकुलर बीट होती है, जैसे हमारी तीन ताल है, झप ताल है, मत ताल, कहरवा, रूपक ताल, दीपचंदी ताल। तो जैसे ताल एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जैसे अब तीन ताल है, या चलिए कहरवा लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये अभी मिड टोन पे बज रही है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, धा दी दिन धा, ऐसे बज सकती है। एंड मतलब एक ही ताल पर वो है एक ही, बट वो तेज उसका दुगुन हो सकता है, चौगुन हो सकता है, या फिर वो आधी हो सकती है, अति विलंबित जैसे होता है, तो हम वो खुला गाते हैं। तो ताल इज जस्ट सम नंबर्स, उनकी एक पर्टिकुलर हमने बीट बना दी है। बोल होते हैं तबले के, जैसे धागे नाती नाके धीना, तो उनमें वो चलती रहती है, तो दैट इज ताल। एंड कंफ्यूजिंग कह सकते हैं शुरू में, जैसे कुछ तालें होती है, दीप चंदी, रूपक, 14 मात्रा है, 7 मात्रा है, मत ताल है, तो वो लगती है, पर एक बार अगर आपके मन में वो बैठ जाए तो उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं उस ताल में, अपनी आलाप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
0: जब आप सीखने जाते हो, जब आप पढ़ रहे हो होते हो ये,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: उस समय क्या आपका फोकस 100% उधर ही की तरफ होता है, तभी जाके हम इस चीज को समझ सकते हैं जैसे आपने अभी हमें समझाया ताल के बारे में?
1: हाँ जी, 100% फोकस, तो किसी भी चीज़ को करना है तो पूरा फोकस इस पे लगाना पड़ता है एक बार के लिए। एक बार समझ आ जाती है, उसके बाद आप आराम से चलती रहती है, वो धीरे जब सुनेंगे तो खुद आ जाएगी। शुरू में जब कोई नई चीज़ सीखनी होती है, जैसे रिसेंटली मैंने एक गाना सीखा मत ताल में, गुलाम अली जी का और कविता कृष्णमूर्ति जी की, वो गज़ल है,
0: ठीक,
1: तो वो मत ताल में 9 मात्रा, तो उसे सीखने में काफ़ी मुझे टाइम लगा पूरा, लाइक मैंने दिन ही सुनता रहा, बट एक बार जब समझ आती है तो उसके बाद धीरे धीरे हो जाता है।
0: तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती, क्या उसकी एक झलक हो जाए?
1: हाँ जी, जरूर।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, और आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है अभिजीत शर्मा, जो एक सुप्रसिद्ध गायक बनने वाले हैं। आइए अभिजीत से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। आज हम उनसे उनके जिंदगी के बारे में सुनेंगे और साथ साथ में उनके कंठ से हम अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे। अभिजीत, वैसे तो आपका बचपन ही अभी चल रहा है, ये बताइए बचपन में आपके पसंदीदा खिलौने क्या होते थे और क्या क्या शरारतें आप घर में करते थे?
1: बचपन में अंकल, एक तो आर्मी, जब से ये मैंने उरी वगैरह जितनी भी आर्मी की मूवीज हैं देखी, तब से मुझे बस एक भूत चढ़ गया था कि हाँ, मेरे को बस आर्मी ऑफिसर बनना है, कि बिल्कुल मुझे वैसा करेज करना है जैसे अंधेरा होना, तो मैंने अपनी गन लेके चल पड़ना कि मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हूँ।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे होता है, और गन्स एंड अवेंजर्स होते हैं जैसे, उनकी टॉय फिगर्स होती है, उनके साथ उन्हें सेट करके रख देना कि अब कल लड़ाई होगी, कल वॉर है। तो ऐसे ऐसे
0: जब हम किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं, काबिल होते हैं, तो वो शरारतों में भी काबिल होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कम से कम एक शरारत तो बता दीजिए जो आपने बचपन में की होगी।
1: शरारतें अंकल, मेरी जो शरारतें होती थी एक्चुअली वो बहुत लॉजिकल शरारतें होती थी। जैसे मेरे आकाश भैया की चॉकलेट पड़ी है,
0: ठीक,
1: तो अब उन आकाश भैया का ये है कि जैसे कि अभी मैंने चॉकलेट रख दी, अब मैं इसे 3-4 दिन में आराम आराम से करके खाऊंगा।
0: ठीक है,
1: पर मुझे ये था कि कभी भी किसी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी तड़पाना नहीं चाहिए, तो मैं एक ही दिन में फिर उनकी सारी चॉकलेट खा जाता था।
0: और फिर कुछ नाराजगी झेलनी पड़ती थी?
1: नाराजगी नहीं, बस थोड़ा सा भागना पड़ता था।
0: चलिए, यही हम जानना चाह रहे थे, और ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जिसकी जिसके साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने यूनिफॉर्म की बात की, आपने आर्मी की बात की, आपने देश प्रेम की बात की। देश प्रेम को आप गा के हमारे श्रोताओं को कैसे बता सकते हैं?
1: जी जरूर अंकल।
0: और इसके बारे में आप कुछ डिटेल भी बता दीजिए, हमारे देश में देश प्रेम को जगाना कितना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि जो आप गाना गाएंगे उससे भी हम लोगों तक वही बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
1: देश प्रेम तो अंकल हर एक आदमी में वैसे आजकल है ही, क्योंकि सबको पता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आराम से अपने घरों में बैठे हैं, चल पा रहे हैं सड़कों पर, इधर स्कूल जा पा रहे हैं। अगर आर्मी ही ना होती तो फिर ऑब्वियसली ये सब बहुत मुश्किल होता, एंड देश काफ़ी अब कितना सुरक्षित फील करते हैं। आर्मी का तो एक बहुत बड़ा रोल है, और आर्मी तो सबके दिल में अब बसती है, क्योंकि हमें एक छोटी सी कील लग जाए तो हम कहते हैं कि ओहो, आज काम नहीं हो पाएगा, आज लिख नहीं पाएंगे। वो वहाँ गोली खा कर भी कहते हैं कि नहीं, हम अभी भी लड़ेंगे देश के लिए,
0: देश के लिए।
1: तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और उनके लिए मैं एक गाना ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, वतन पे जो फिदा होगा।
0: वाह।
1: हिमालय की बुलंदी से

कहो बहनों से दे भाई।

0: वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, ये बहुत साल पहले लिखा गया है और इसके साथ जुड़ा हुआ आज हमारे देश का जो थीम है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सुरक्षित यहाँ पर तभी है जब हमारे सीमाओं पर प्रहरी उस पर नजर रखे हुए हैं और हम उनको यहाँ से अपना प्यार और स्नेह भेज रहे हैं और साथ में उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आगे चलते हैं, अभिजीत से बात करते हैं। अभिजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने गुरुजन को कैसे याद करते हैं, क्या कहना चाहोगे अपने गुरुजन को FM 90.0 MHz के माध्यम से, कौन सा गाना उनके लिए आप समर्पित करोगे? अभिजीत, मैं चाहूंगा कि आप विस्तार में अपने गुरुजन के बारे में बताएं।
1: अंकल, मेरे सभी गुरुजन बहुत सपोर्टिव रहे हैं एंड सभी ने जितना भी कुछ मुझे सिखाया है बहुत प्यार से सिखाया है, चाहे थोड़ी सी ही चीज़ हो, पर जैसे अक्विंदर मैम, शिल्पा मैम, मंजू मैम, राज कमल सर एंड मेरे गुरुजी श्री संतोष कटारिया जी, सभी ने मतलब इतना प्यार दिया है कि मतलब एक जैसा होता है ना कि हाँ जी गुरु जी हैं, स्ट्रिक्टनेस होती है, तो मेरे लिए तो मैं पता नहीं लकी कह सकते हैं, पर मेरे लिए सभी गुरुजन एकदम ऐसे लाइक फ्रेंड्स की तरह हैं एंड बहुत प्यार किया है एंड जब भी मैं कोई चीज़ सीखता हूँ तो मुझे सबकी याद आती है, सर की याद आती है कि सर ने ऐसे सिखाया वैसे सिखाया कि ये मैं अब गलत कर रहा हूँ। कोई गाना मैं रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डालता हूँ तो सबसे पहले वो सर से अप्रूव होता है, उसके बाद ही हो जाता है एंड जितने भी जैसे मेरे सर मुझे सिखाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कभी नहीं लगा कि हाँ अब मेरे थोड़े ऐसा मुझे स्ट्रिक्टनेस है, मुझे वो है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे सर इज़ जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। एंड जैसे मैंने अपनी अभी पोर्टफोलियो बनाया तो उसमें भी मेरे गुरुजी का मैंने लिखा माय गुरुजी एंड माय बेस्ट फ्रेंड, तो उन सब के लिए मैं एक गाना एंड सर के लिए स्पेशली ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगा।

0: मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि गुरुजन जितने भी अपना आशीर्वाद अपने शिष्यों को देते हैं उनसे ही वो शिष्य आगे की ओर बढ़ते हैं, और खुशनसीब है वो गुरुजन जिनको अभिजीत जैसे शिष्य मिलते हैं, और साथ में अगर वो इनके दोस्त भी हैं। हम संतोष कटारिया जी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे देश के लिए एक ऐसे कलाकार को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में हमारा गौरव बनेगा।
1: तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा यार ना।
0: अभिजीत के साथ हमारी बातों का सिलसिला जारी है और आज हमारी कोशिश है कि हम अभिजीत के गाने तो जरूर सुनेंगे ही, पर साथ में अभिजीत के जिंदगी के बारे में हम जाने। अभिजीत, आपके परिवार में आपके पापा भाई गाते देखे गए हैं सोशल मीडिया पर, क्या माँ भी गाती हैं?
2: जी हाँ, मम्मा भी गाते हैं।
0: क्या कहना चाहेंगे माँ के लिए? उम्मीद है कि वो ये प्रोग्राम सुन रही हो।
2: अंकल, जैसा कि सभी जानते हैं कि सबसे पहले दुनिया के जो पैदा होते ही जो सबसे पहले गुरु होते हैं और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं माँ बाप और अपने भाई बहन ही होते हैं। आकाश भैया जैसे, वो भी ही इज जस्ट लाइक माई गुरु, एंड पापा मम्मा तो हैं ही। तो मम्मा से तो मतलब अगर मैं बोलने पे आऊँ फिर हमारा ये प्रोग्राम जो है ख़त्म ही नहीं हो पाएगा क्योंकि पापा मम्मा भैया इनके लिए जितना मैं बोलूँ उतना ही कम है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी किसी भी बात पर जो भी होता है सपोर्ट सबसे ज़्यादा परिवार वाले करते हैं, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो पर परिवार वाले हमेशा आपके साथ होते हैं। मम्मा के लिए आज एक गाना ज़रूर गाना चाहूँगा, उसके बाद मैं पापा के लिए भी गाना चाहूँगा या फिर साथ में गा सकता हूँ, पर पहले मम्मा के लिए ज़रूर गाता हूँ।

0: मुझे जब माँ के लिए कुछ लिखना होता है तो मैं एक ही शब्द लिखता हूँ, माँ अनमोल। और सच में माँ अनमोल होती है। आगे चलते हैं, अभिजीत, आप का स्कूल का क्या योगदान है आपकी जिंदगी में, खास तौर पर एज ए स्टूडेंट, एज एन आर्टिस्ट, एज ए सिंगर? क्या कहना है स्कूल के दोस्तों, टीचर्स और मेंटर्स के लिए?
1: स्कूल अंकल मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जितनी भी जैसे कोई प्रोग्राम है, छुट्टियाँ चाहिए होती है, लीव्स चाहिए होती है, तो स्कूल वाले तो आर दे आर लाइक बहुत ज़्यादा खुश कि हाँ ज़रूर जाओ। एंड जैसे अभी यूनिट टेस्ट हुआ तो मेरा एक शो था एंड कानपुर था, तो स्कूल वाले मतलब बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। मैंने देखा है कुछ स्कूल जैसे करते सकते हैं कि नहीं हमारे यूनिट टेस्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास है, बट स्कूल वाले इतने कोऑपरेटिव हैं कि उन्होंने बिना स्किप कराया एंड उसके बाद मेरा फिर से वापस दिलवा दिया। जितने भी टीचर्स हैं वो मतलब सब समझते हैं। जैसे मैंने मैम से पूछा कि मैम यूनिट टेस्ट का अब क्या करूँ मैं, मेरा तो फंक्शन है, तो मैम ने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, तू जा एंड मैं तेरा यूनिट टेस्ट बाद में कराती हूँ। एंड प्रिंसिपल मैम स्पेशली, वो तो मतलब दिया इतना ज़्यादा सपोर्ट, तो मतलब कौन ही कर सकता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। स्कूल वाले तो बहुत प्यार करते हैं एंड दोस्त, तो दोस्त आपको पता ही है अंकल, सभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव तो होते ही हैं।
0: क्या कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कभी खिंचाई भी करते हैं?
1: दोस्त अंकल खिंचाई मतलब किस वे में?
0: शरारत करना, और किस तरीके में शरारत करना, तंग करना, या कभी कहते हैं कि अभिषेक जरा साइड पे आ जाओ, हमें कोई गाना सुनाओ, क्या ऐसा होता है स्कूल में कभी?
1: स्कूल में तो नहीं अंकल, वैसे मैं गाना गाता रहता हूँ, यहाँ इंस्टाग्राम फेसबुक है तो वहाँ पे सुन लेते हैं। स्कूल में उन्हें पता ही है गाएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बाकी दोस्त तो मेरे सब बहुत अच्छे हैं, मेरा स्पेशली जो दोस्त है आर्यन आहूजा अभी लाइक वो बहुत अच्छा है, एंड शतिल है, आदित्य है, अर्नोल, वो तो सारे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कोई गाना रिकॉर्ड करा कुछ नया तो मैं उन्हें भेजता हूँ कि कैसा लग रहा है, फिर वो बताते हैं। और एक है वो तो पूरा एकदम सुन के कि यार ये तेरे तो तूने गा तो दिया बट तेरे लेवल का नहीं है, तू और अच्छा गा, मतलब उसको नॉलेज बिल्कुल नहीं है पर वो फिर भी उसको पता है कि कैसा गाता है, तो दोस्त तो बहुत अच्छे
0: यानी
1: हैं।
0: कि दोस्तों में क्रिटिक होना बहुत जरूरी है, जो आपकी कमियां हैं या आपकी गलतियां हैं उनके बारे में बता देता है।
1: हाँ
0: दोस्त
1: जी
0: एक्चुअल में सही वही होता है जो हमारी कमियों के बारे में बता देता है, ताकि आप अगली जो कोशिश करेंगे कि वो एक्यूरेट करें।
1: जी बिल्कुल।
0: अभिजीत, आपको 60 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया है, क्या मायने रखता है आपके लिए एक अवार्ड?
1: अंकल मेरे लिए एक अवार्ड इज जस्ट लाइक एक आशीर्वाद। जितने अवार्ड्स मिलते रहते हैं मैं कभी भी उन्हें एक लाइक ऐसे ट्रॉफी के वे में नहीं लेता, हमेशा उन्हें एक ऐसे वे में लेता हूँ कि ये मुझे मोटिवेट करते हैं उन्हें देख के कि मुझे और एंड और आगे बढ़ना है। जैसे इतने लोग प्यार से, इट इज जस्ट अ टोकन ऑफ लव जैसे कहते ही हैं हम कि हम आपको एक टोकन ऑफ लव देना चाहेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है, अवार्ड्स मिलते हैं एंड बहुत प्यार मिलता है, एज अ ब्लेसिंग काउंट करता हूँ मैं एक अवार्ड को।
0: बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि हर दिन हमें कुछ नया करना है, हर दिन हमें आशीर्वाद चाहिए, हर दिन हमें मोटिवेशन चाहिए। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ आगे सीखना जरूरी है
1: जी
0: ताकि आप आगे की ओर बढ़ जाएं। अभिजीत, अंबाला कैंट का गौरव है आप। पहले रेडियो वितस्ता के फेसबुक लाइव शो में प्रस्तुति दे चुके हैं 3 साल पहले। अब उसके बाद आज आप अंबाला कैंट के पहले FM रेडियो स्टेशन पर आए हैं। आपको कैसा लग रहा है?
1: अंकल मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे अंबाला कैंट का एक ऐसे, हमारी अंबाला कैंट की एक पहचान और एक आवाज़ बन रही है रेडियो वितस्ता, एंड हम बहुत लोगों को अपनी अंबाला कैंट के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और अंबाला कैंट की शान बढ़ाते हैं, उनकी हम आवाज़ दे सकते हैं, बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमारे साथ आज प्रोग्राम में अभिजीत शर्मा जी के पिताजी श्री राजीव शर्मा जी भी मौजूद है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
2: धन्यवाद भारत जी, आपने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया, आपके आभारी रहेंगे।
0: कैसा महसूस होता है एक पिता को जब उनका सुपुत्र बहुत सारे एक समूह पर अपनी प्रस्तुति देता है गायन के रूप में?
2: सबसे पहले तो आप जब अभिजीत के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पुत्र न कह के सुपुत्र कहा, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु का। और वैसे भी ये बांके बिहारी जी वृंदावन से प्रसाद स्वरूप ही हमें मिला था, क्योंकि अपने बड़े भाई से ये 10 साल छोटा है और जैसे एक आइडियल फैमिली होती है, वो सोचते हैं ठीक है यार, एक बच्चा है उसी को ठीक से परवरिश करेंगे, उसी के सपने पूरे करेंगे, बस फैमिली कंप्लीट है। क्योंकि मेरे बड़े भाई के यहाँ एक बेटा एक बेटी है, तो हमें लगता था कि चलो बेटी घर में है तो भाई हो गए। तो समहाउ इसके बड़े भाई को किसी दोस्त ने या किसी कजन ने कुछ ऐसा कहा कि यू आर ओनली चाइल्ड और तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। ही इज वेरी सेंसिटिव।
0: यस
2: उसने ये बात दिल को लगा ली और उसने अपनी माँ से कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो हमने, जैसे माँ अमूमन बच्चे को कह देती है, कह रहे नहीं कोई बात नहीं, वो तेरा भाई है, बहन है, विशु है, जयश्री, जो मेरे बड़े भाई के बच्चों के नाम है। पर उसने वो बात दिल में ऐसी लगा ली कि स्कूल में वो एक कोने में बैठ के रोता रहता था, पढ़ता नहीं था, और टीचर्स को लगा दिस इज ए केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस,
0: ओहो अच्छा
2: एंड दे कॉल्ड मी देयर। और मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ही इज वेरी पेम्पर्ड, और हमारे घर का माहौल तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा था, मेरे माता पिता जी होते थे, बहुत लाडला था बेटा। तो स्कूल इस मामले में बहुत जिम्मेवार है, मैं धन्यवाद कहूंगा स्कूल का। उन्होंने एक चाइल्ड काउंसलर को बुला लिया और उससे जब काउंसलिंग में बात निकली तो उसको ये चीज खा रही थी कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई भाई नहीं।
0: ओके
2: देन स्कूल एंड टीचर्स दे टोल्ड अस कि इफ यू कैन अफोर्ड देन यू शुड प्लान फॉर अनदर बेबी।
0: ओके
2: और अभिजीत, व्हेन माय वाइफ इज इन फैमिली वे, तो मैं पहली बार वृंदावन जी गया था, तो वहां आकाश ने मुझे कॉल करके कहा कि पापा मेरे लिए आप वहां से क्या लाएंगे। तो मैंने कहा आप बताओ क्या चाहिए।
0: ठीक है
2: तो ही सेड के बांके बिहारी जी को ले आओ। तो ये सवाल इतना टेढ़ा था कि मैंने कहा मैं आपको थोड़ी देर में बांके बिहारी जी से पूछ के बताता हूँ। तो जब मैंने सोचा कि मैंने कभी इलॉजिकल आंसर नहीं दिया अपने बच्चे को, आज उसी का नतीजा है कि ये कहीं पहुंच रहे हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, ये संगीत में जा रहा है। तो मैंने उन्हें फिर दोबारा फोन मिला के बोला, मैं कहा बेटा बांके बिहारी जी कह रहे हैं अगर मैं आपके साथ चल पड़ूंगा तो बाकी भक्त किसके दर्शन करेंगे। तो वो बांके बिहारी जी कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल बन के मैं आपके घर में जल्दी आ जाऊंगा। तब अभिजीत का जन्म।
0: बहुत अच्छी बात है, ये एक अवतार है, मैं तो यही कहूंगा। तो हमारी कोशिश ये हमेशा रहनी चाहिए कि हम आगे की ओर बढ़ें और उस प्रभु का धन्यवाद हमेशा के लिए करें।
2: जी, हम ये महसूस करते हैं कि ही इज बेसिकली सन ऑफ गॉड, वी आर जस्ट हिज केयर टेकर्स।
0: बहुत अच्छी बात है, और इससे ज्यादा खुशनसीब माता पिता क्या हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दें।
2: जी, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम राजीव शर्मा है, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश चंद शर्मा, और अभिजीत की हमारी फोर फादर्स में एक रिजेम्बलेंस और भी है। मेरे दादाजी एक अध्यापक थे, वो मुनिमी, जो बेसिकली पहले टाइम के जो मुनीम हुआ करते थे, जो अगर आज का कैलकुलेटर भी आप लगाएं
0: हाँ
2: तो मुनीम उससे तेज कैलकुलेशन कर लेते थे, तो वो मुनीमी पढ़ाया करते थे। और उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था, उसके बावजूद भी आप ये लगाइए कि 100 किलोमीटर दूर तक उनका नाम चलता था। तो और कमाल की बात यह है, एक संयोग की बात है कि उनकी कद काठी बिल्कुल अभिजीत वैसा ही हो रहा है, उनकी हाइट मेरे पिताजी से हमसे ज्यादा थी। अब जब कभी मैं इसे देखता हूं और जब मैं इसका नाम सुनता हूं तो मुझे बार बार दादाजी श्री गीताराम शर्मा जी का ख्याल आता है कि शायद उन्हीं का स्वरूप दोबारा से हमारे परिवार में आ गया।
0: बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे सोचते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे खुशी का समा और कोई भी नहीं हो सकता है। आप आज अंबाला कैंट के पहले एफएम स्टेशन पर है जो कम्युनिटी रेडियो है, तो कैसा आप महसूस करते हैं, क्योंकि आज हम व्यक्तिगत रूप से आज पहली बार मिले हैं।
2: जी, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने देखा है कि किस तरह से आपने ये सपना संजोया है और कितना आपने जी जान लगा के इसको यहाँ तक आप लेके आए हैं, और आपके एफर्ट्स में आपके स्टूडियो में देखकर और जिस तरीके से आप नए नए चेहरों को, नए लोगों को यहाँ ला के उनकी आवाज़ सब जगह पहुंचा रहे हैं, बड़ा ही सराहनीय काम है और मुझे खुद बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और खास तौर से जब अभिजीत यहाँ आया है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मेरे लिए जो गर्व की बात यही है कि मुझे, मेरे सर्कल में बहुत रिजर्व्ड आदमी रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेरा सर्कल मैंने नहीं रखा, काम में इतना व्यस्त रहा क्योंकि अकेला काम करने वाला हूँ, तो बहुत से लोग मुझे अभिजीत फादर ही जानते हैं, और यहाँ भी आज मैं अभिजीत के पिता के रूप में आया हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा और ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। क्योंकि अभी एक वाक्य हुआ कि मेरे बड़े पुराने मित्र, करीबन 15 साल पुराने मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, मैंने उन्हें कॉल किया और कहा कि मैं अम्बाला से राजीव बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पहचान नहीं पा रहा, तभी मैंने उन्हें बोला कि अभिजीत का फादर, और वो उन्होंने
0: वो
2: इमीडिएटली मुझे
0: एकदम
2: रिकग्नाइज कर लिया, तो मुझे लगा कि
0: माँ बाप के लिए
2: परवरिश तो ठीक जा रही है।
0: परवरिश ठीक जा रही है, माँ बाप के लिए इससे खुशी का समय क्या
2: जी
0: हो सकता है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं, और श्रोताओं मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभिजीत के पिताजी राजीव जी भी गाते हैं, और हम अभी आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आप लोगों को दोनों की आवाज में एक ड्यूएट भी सुनाएंगे। बट उससे पहले मैं अभिजीत से जानना चाहता हूँ कि अभिजीत, आपने भुज में एक कंसर्ट किया, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
1: अंकल, भुज का कॉन्सर्ट तो बहुत ही ज्यादा अलग था। मतलब जैसे कहीं मैं दूर जाता हूँ कॉन्सर्ट करने, तो थोड़ा सा एक फील आती है कि हाँ थोड़ा दूर है, अलग सा है सब। और वहां जाके तो एकदम ऐसे एकदम लगा कि हाँ सब अपने आप को जानने वाले हैं। मेरे वहां पे हर्षुख भाई सोनी दादू हैं, उन्हें मैंने अपना दादू बना लिया, इतना प्यार दिया उन्होंने। तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितनी बार मिल चुके हैं, रोज ही मिलते रहते हैं, तो इतना प्यार दिया। एंड जितने भी लोग थे, मतलब उनके जो चेहरे पे जो स्माइल थी, वो ऐसा पता चल रहा था कि वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड मतलब बहुत अच्छा लगा भुज का कॉन्सर्ट, तो फिर से मतलब बहुत प्यारा था।
0: कोई गाना आपको याद आ रहा है कि जो आपने वहां गाया हो और हम भी और हमारे श्रोता भी उसका कुछ हिस्सा सुन पाए?
1: जी अंकल, मैंने वहां पर वैसे तो 7 गाने गाए थे, पर उसमें से एक था जी, अभी वैसे तो दोपहर का समय है, बट फिर भी मैं गा देता हूँ।

पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो।

0: जी हाँ, हमारे साथ है राजीव शर्मा जी और अभिजीत शर्मा जी, और साथ में मैं। सर, आप दोनों से एक अनुरोध करता हूं कि जो हमारे श्रोता है, आप दोनों की आवाज में कोई सा भी आपका मनपसंद ड्यूएट या गीत आप सुनाएं, ताकि जो सुर और ताल की जो लय है वो जिंदगी में भी बनी रहे और संगीत में भी बनी रहे।
1: जी जरूर, एक गीत है जो मैं अपने दोनों बेटों के साथ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और वो दोस्ती की थीम पे ये गीत है जो हम अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। अभी सोशल मीडिया पे भी किसी ने डाल दिया था तो मैं वही चाहूंगा सब श्रोता सुने।
0: प्लीज।
1: और एक अपील भी करूंगा कि पिता को अपने पुत्र के साथ हमेशा मित्रता पूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए, अगर आप उससे उसका 100% निकालना चाहते हैं। पुत्र जब कामयाब होता है ना, तो अखबार, सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी सब उसको प्रमोट करते हैं
0: जी।
1: लेकिन अगर पुत्र कभी नाकामयाब हो जाए तो उसके पिता को खड़ा रहना चाहिए उसके सहारे में, ताकि वो टूटे नहीं
0: जी,
1: और अपने आप को फिर से समेट के दुगनी ताकत के साथ अपने श्रेय, अपने क्षेत्र में जो भी वो करना चाहता है उसे कर पाए।
0: बहुत अच्छी बात।
1: दोस्ती का ही ये गीत मैं आपको सुनाऊंगा। ये

0: ये जिंदगी हम सब की ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, जिंदगी का कारवां।
1: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
2: और मैं हूं विकास शर्मा।
1: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
2: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
1: निर्माता है विकास शर्मा
2: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
1: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।

0: की दालच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी। अंबाला के शब्दों में बात करते हैं नाम और नींव। अंबाला कहां से आया? सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी

0: ने कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से? इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमों के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

सेना का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

एक मूरत जो मंदिर से प्यारी लगे, एक रोशनी जो ताजगी सारी लगे, वो कोई और नहीं बस माँ ही तो है, जिसकी ममता हमें सबसे न्यारी लगे।

ममता के आंचल में सारा जहां है, इसकी दुआओं में रब का करम है। जो बिछड़ जाए माँ से किसी मोड़ पर, उसकी दुनिया में बस एक मातम है।

माँ की दुआओं में ऐसा असर होता है, हर दर्द भी गुलाब का सफर होता है। अगर साथ हो माँ के हाथों की छांव, तो कांटों में भी जीना हंसी होता है।

जब भी गिरते हैं दुनिया की ठोकरों से, माँ का आंचल हमें सहारा देता है। उसके बिना अधूरी है हर खुशी, उसका प्यार ही सबसे प्यारा होता है।

जो सुलाती थी लोरी सुनाकर, आज भी दिल उसे याद करता है पुकार कर। हर दर्द मिट जाता है उसकी ममता से, माँ का आंचल सुकून देता है सहार कर।

0: कुछ रिश्ते आवाज के मोहताज नहीं होते, कुछ एहसास सिर्फ महसूस किए जाते हैं और कुछ धुनें सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। आपने ट्यून इन किया है FM 9.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह और विदस्ता की खूबसूरत लहरों पर। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भारत सोपोरी और लेकर आए हैं हम एक ऐसा कार्यक्रम जहां गीत सिर्फ बजते नहीं बल्कि आपकी यादों, आपकी चाहतों और आपके एहसासों के साथ गूंजते हैं। यह है आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश
1: और मैं हूं आपकी अपनी आरजे किरणी। कहते हैं ना, संगीत तो जुबान है, जिसे सुनने के लिए कान नहीं दिल चाहिए। रेडियो विदस्ता पर आपकी भेजी हुई हर फरमाइश सिर्फ एक गाने की फरमाइश नहीं होती, उसके पीछे छुपी होती है किसी की याद, किसी की मोहब्बत, किसी की मुस्कुराहट और कभी कभी किसी की खामोश कहानी।
0: और इसलिए दोस्तों, आपकी फरमाइश में सिर्फ आपकी पसंद का गाना नहीं बजाया जाता, यहाँ बजती हैं आपकी मोहब्बतें, यहाँ सुनाई देती हैं आपकी ख्वाहिशें, यहाँ महसूस होते हैं आपके इमोशंस। आप जो महसूस करते हैं, आप जो कहना चाहते हैं लेकिन शायद शब्दों में कह नहीं पाते, उन्हीं एहसासों को हम एक खूबसूरत धुन के सहारे आपके अपनों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
1: कभी कोई गीत हमें किसी खास इंसान की याद दिलाता है, कभी कोई धुन हमें पुराने दिनों में वापस ले जाती है और कभी कोई गीत बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाता है। तो आपकी फरमाइश हमारे लिए सिर्फ एक नाम या एक गाने का टाइटल नहीं है, ये आपके दिल की आवाज है और रेडियो विदस्ता की कोशिश है कि आपके दिल की यही आवाज किसी दूसरे दिल तक पहुंचती रहे।
0: रेडियो विदस्ता की ये लहरें सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं है दोस्तों, ये एक सिलसिला है जो दिलों को दिलों से जोड़ता है। जिस तरह विदस्ता की लहरें अपना सफर लगातार तय करती रहती हैं, उसी तरह आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम भी चलता रहेगा, आपकी यादों के साथ, आपकी मोहब्बतों के साथ, आपकी ख्वाहिशों के साथ, आज, कल और आने वाले हर हफ्ते आपकी आवाज बनकर।
1: तो दिल थाम लीजिए, यादों के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है वो सफर जहां हर गीत के पीछे होगी आपकी एक कहानी, हर धुन के पीछे होगा आपका एक एहसास और हर फरमाइश के साथ जुड़ा होगा किसी अपने का नाम। मैं हूं आरजे किरणी और मेरे साथ है भारत सोपोरी। आप सुन रहे हैं FM 90.0 रेडियो विदस्ता और अब आपकी मोहब्बतों, आपकी ख्वाहिशों और आपके एहसासों का अपना कार्यक्रम आपकी फरमाइश शुरू करते हैं। चलिए पहली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पहली फरमाइश आई है फिल्म गृहस्थी के गाने की, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, जिसके बोल है जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया। और ये फरमाइश हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाली श्रोता है पीएस नाहोकर, निर्मला नाहोकर, विशाल नाहोकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। लीजिए पेश है इन सब का ये पसंदीदा गीत।

जी हाँ दोस्तों, आपकी नजर है दूसरी फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अंबाला हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधु। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधु, जसबीर सिंह संधु, वरनीत कौर संधु, पवनीत कौर संधु और सारा संधु परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से गीत। गीत के बोल है जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने और ये लिखते हैं सभी कार्यक्रम प्रस्तोता को हमारी मीठी मीठी राम राम। बंशीलाल संधु और आपके परिवार को हमारी तरफ से भी बहुत सारा प्यार और मीठी मीठी राम राम। आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सदाम। ये सुनना चाहते हैं फिल्म नीला आकाश का गाना जिसके बोल है तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। इस गाने को आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। लीजिए पेश है इनका फरमाइशी गीत।

जी श्रोताओ, लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है रणधीर बांगड़। ये सुनना चाहते हैं फिल्म राम लखन का गीत। गीत के बोल है मुझे तुमसे है कितने गिले। इस गीत को आवाज दी है मनहर उदास, अनुराधा पोडवाल ने। रणधीर बांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम और वीरेन। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता है आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और हैप्पी आनंद। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म चिराग का गाना, जिसके बोल है जब देख लिया मैंने तुमको, और अपनी खूबसूरत आवाज में सजाया है मोहम्मद रफी ने। लीजिए, प्रस्तुत है ये खूबसूरत नगमा।

सुनाते हैं आपको अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता है विनय मोहन खारवन। ये सुनना चाहते हैं फिल्म दोस्त का गीत। गीत के बोल है गाड़ी बुला रही है। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है मीनाक्षी, पलोमा व डॉक्टर ईशानी। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये मनपसंद नगमा।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है पुणे महाराष्ट्र से, और भेजने वाली श्रोता है निधि शुक्ला। ये सुनना चाहती है फिल्म अभिमान का गीत। गाने के बोल है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, और इस गाने को खूबसूरत आवाज में सजाया है लता मंगेशकर जी। और आपकी इस प्यारी सी फरमाइश पर लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

लेते हैं श्रोताओं अगली फरमाइश जो हमारे पास पहली बार आई है इन श्रोता की ओर से, और ये है अमिता बत्रा प्रभु प्रेमपुरम अम्बाला कैंट से। ये अपनी फरमाइश का गीत अपने माता और पिता को डेडिकेट करना चाहते हैं, जिनका नाम है श्री वीपी बत्रा और श्रीमती सुदेश बत्रा। अमिता बत्रा जो गाना डेडिकेट करना चाहती है अपने पेरेंट्स को, वो है फिल्म एक फूल दो माली से। गीत के बोल है तुझे सूरज कहूं या चंदा। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है मन्ना डे ने, और अमिता बत्रा के साथ सुनने वाली अन्य श्रोता है गौरव, शनाया, अमित, पूनम और तनुष। आइए प्रस्तुत है ये डेडिकेटेड सॉन्ग जो अमिता ने डेडिकेट किया है अपने माता पिता को।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगली फरमाइश, जो भेजी है हमारे पास कैप्टन अमरजीत शर्मा, बलविंदर सिंह और उनके दोस्तों ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म नागिन का गीत, जिसके बोल है मेरा दिल ये पुकारे आजा, और इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज में सजाया है लता मंगेशकर ने। लीजिए पेश है इनकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी किसी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत की फरमाइश करना चाहते हैं, हरियाणवी गीत या पंजाबी गीत की, तो आप जरूर हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। आपको लिखना होगा अपना नाम, कहां से आप लिख रहे हैं, और आप उन सभी दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के नाम लिख सकते हैं जो ये फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। आप हमें मैसेज भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे और इसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। अब लेते हैं हम इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश, जो हमारे पास इन श्रोताओं की ओर से पहली बार आई है। ये फरमाइश आई है अंबाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंबाला से। भेजने वाले श्रोता हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, इंजीनियर देवाशीष और आयर वेटरन अजय पाल सिंह। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आप तो ऐसे ना थे से गीत। गीत के बोल है तो इस तरह से मेरी जिंदगी में। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। हम आपको इस गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं और इसी उम्मीद से कि अगले हफ्ते हम आपसे फिर इस कार्यक्रम में मिलेंगे।
1: इसके साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कितना हसीन होता है ना फरमाइशों का ये सिलसिला। हर एक फरमाइश में आपकी मोहब्बत छुपी होती है। छोटी सी जिंदगी है, बड़ा सा कारवां है। आपकी पसंद से ही तो सजीला ये जहां है, पर अब रुखसत होने का वक्त आ चुका है। दिलों में यही मिठास लिए अब इजाजत चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।
0: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: की गवाही बड़ी। अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहां तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहां खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी ओर भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

नमस्कार, मैं हूं भारत सोपोरी, आपका रेडियो दोस्त। लेकर आया हूं वितस्ता गीतमाला एपिसोड 3। आज का ये एपिसोड आधारित रहेगा देश विदेश के जाने माने और अंबाला की शान आदरणीय नफ्स अंबालवी साहब के एक कविता संग्रह सराबों का सफर पर, जहां हम आपको सुनाएंगे नफ्स साहब के लिखे शेर और उनके साथ जुड़े नगमे, गीत और गजलें। पर उससे पहले आपको बताऊं कि सराबों का सफर के मायने क्या है। वो रेत जो गर्मियों में दूर से पानी की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और प्यासे उससे पानी समझकर उसकी ओर दौड़ते हैं, या यूं कहें ए जर्नी ऑफ मिराजेस। इस शायर की पंक्तियां हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्यों में कही है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि यह आसमां कुछ कम है। ये काव्य संग्रह नफ्स अंबालवी साहब ने अपनी बेटी आकांक्षा के नाम किया है। मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, मेरे हिसाब में कुछ नेकियां निकल आई। इस काव्य संग्रह पर देश के कई विद्वानों ने अपनी शाबाशी दर्ज की है नफ्स अंबालवी साहब के लिए। मुनव्वर राणा साहब लिखते हैं, शायद यही सबसे बड़ी खूबी नफ्स अंबालवी के कलाम में है। दिल्ली और लखनऊ की जुबां और मुहावरों को हरियाणा में बैठे हुए शायर ने जिस एहतराम और जिम्मेदारी से भरता है, वो काबिले सिताइश है। नफ्स अंबालवी साहब के कुछ शेर पर उन्होंने नजर डाली है। अब तक तो इस सफर में फकत तशनगी मिली, सुनते थे रास्ते में समंदर भी आएगा। मुजफ्फर रजमी साहब लिखते हैं, नफ्स अंबालवी को असर हाजिर के गजल को शायरों में इम्तियाजी हसियत अता करती है। उनके ये शेर उनकी शायरी की बुलंद परवाज की अलामत है। लिखते हैं नफ्स अंबालवी के कुछ शेर, फिर एक बार समंदर तेरा उड़ाएगा मजाक, निकल पड़ा हूं मैं कागज की कश्तियां लेकर। मेरे ख्याल की परवाज बस तुम ही तक थी, फिर उसके बाद मुझे कोई आसमान न मिला। उसने पुरखों का मकान बेच तो डाला, लेकिन देर तक फिर दरो दीवार से मिलकर रोया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विदस्ता गीतमाला और आज का कार्यक्रम आधारित है नफ्स अम्बालवी साहब के एक कविता संग्रह सराबों का सफर पर। आइए कुछ और कविताएं आपको सुनाते हैं। नफ्स अम्बालवी साहब लिखते हैं, घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता, हमसे चुप रह के तमाशा नहीं देखा जाता। तेरी अजमत है तू चाहे समंदर दे दे, मांगने वाले का कासा नहीं देखा जाता। जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूं, मुझसे कोई भी हो प्यासा नहीं देखा जाता। यह इबादत है, इबादत में सियासत कैसी, इसमें काबा या कलीसा नहीं देखा जाता। मेरे लहजे पे ना जा, कॉल का महफूम समझ, बात सच्ची हो तो लहजा नहीं देखा जाता। दिल में एक हुक सी उठती है, रुला देती है, हमसे रोता हुआ बच्चा नहीं देखा जाता। लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, उसकी बुनियाद का नक्शा नहीं देखा जाता। गम की बाजार में कीमत नहीं पूछी जाती, दर्द महंगा है कि सस्ता नहीं देखा जाता। अक्स उबरेगा नफ्स, गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा जाता।

चांदनी चुप थी, शबे गम के सितारे चुप थे, जो भी उस रात गवाहों में थे सारे चुप थे। देखिए वक्त की साजिश की चिनारों के तले, जितने लम्हे तेरे साथ गुजारे चुप थे। चांद का अक्स भी अफसुरदा सा था पानी में, खामोशी झील पे तारी थे शिकारे चुप थे। दिल में एक शोर तमन्नाओं का बरपा था, मगर लब मुकफ्फल थे निगाहों के इशारे चुप थे। लोग जिस नाम को बेताब थे सुनने के लिए, हम उसी नाम की रुसवाई के मारे चुप थे। बेगुनाही मेरी इंसाफ से महरूम रही, मुझको जिन जिन पे भरोसा था वो सारे चुप थे। मेरी आंखों में वो मंजर है कि जाता ही नहीं, जब सफीना मेरा डूबा तो किनारे चुप थे। बेहुनर लोगों में बढ़ते रहे एजाज, मगर जिनकी रौनक थे नफ्स, हम वो इदारे चुप थे।

बस्ती नहीं देखी कभी सहरा नहीं देखा, निकले हैं तो दीवार का साया नहीं देखा। एक अश्क पर हैरान ना हो आंखों में हमारी, तुमने अभी ठहरा हुआ दरिया नहीं देखा। शायद कि वो लौट आया समंदर के सफर से, पहले कभी इतना उससे प्यासा नहीं देखा। पत्थर भी अगर मोम ना हो जाए तो कहना, तुमने मेरे सजदों का सलीका नहीं देखा। मुमकिन है मैं अब खुद को भी ना पहचान पाऊं, एक उम्र से आईने में चेहरा नहीं देखा। मैं सर पे कफन बांध के जिस दिन से चला हूं, तब से मेरी कश्ती ने किनारा नहीं देखा। जुगनू के चमकने से भी डरते हैं यहां लोग, इस शहर ने मुद्दत से उजाला नहीं देखा। उसने कई मासूम बशर कत्ल किए हैं, उस शख्स के सीने पे वो तमगा नहीं देखा। तुम बीट का मरकज तो बने फिरते हो, लेकिन तुम सा भी नफ्स शहर में तन्हा नहीं देखा।

इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010, 7056413010। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 3। आज का कार्यक्रम आधारित था श्री नव संबालवी के काव्य संग्रह सराबों का सफर पर। एडिट किया दीपक कश्यप ने, रिकॉर्ड डायरेक्ट और पेश किया भारत सपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: आपने ट्यून किया है 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। और आपके साथ मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त भारत सोफोरी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज इस खास प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे,
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, और सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम कश्मीर की उस अजीम शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आवाज, अपने अभिनय और अपनी कलम से कश्मीरी कला, नाटक और प्रसारण जगत को एक नया मुकाम दिया। बात हो रही है महान कलाकार, प्रसारक, अभिनेता और निर्देशक आदरणीय पुष्कर बान जी की। कश्मीर का शायद ही कोई ऐसा बाशिंदा होगा जो उन्हें नाम से, उनके काम से या उनके गढ़े हुए किरदारों से ना जानता हो। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से रेडियो और अभिनय के क्षेत्र में जो छाप छोड़ी वो अद्वितीय है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने भरत जी। पुष्कर भान जी का जन्म 26 अगस्त 1926 में श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। कला और रंगमंच के प्रति उनका प्रेम बचपन से ही गहरा था। 1952 में जब वे रेडियो कश्मीर श्रीनगर से बतौर कलाकार और नाटककार जुड़े तो उन्होंने प्रसारण की दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचा जो आज भी एक मिसाल है। पुष्कर जी सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर नहीं थे, बल्कि वे कश्मीर के आम आदमी के दर्द, खुशी और उनके सरोकारों की आवाज थे। क्या आप जानते हैं कि पुष्कर भान जी का सफर कैसे शुरू हुआ था? साल 1952 में महज 2.5 रुपए के दैनिक वेतन से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी बेमिसाल लेखन शैली और अदायगी के दम पर उन्होंने जल्द ही हर किसी को अपना मुरीद बना लिया। 2.5 रुपए, सोचिए, इतनी छोटी शुरुआत से एक इंसान ने इतना बड़ा सफर तय किया। लेकिन उनके अच्छे लेखन और अभिनय की उम्दा प्रस्तुति ने उन्हें जल्द ही पहचान दिलाना शुरू कर दी।
0: अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वे बेहद जमीन से जुड़े हुए, सरल और गहरी समझ रखने वाले इंसान थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका हास्य और व्यंग, ह्यूमर एंड स्टायर। समाज की कुरीतियों, भ्रष्टाचार और रोजमर्रा की दिक्कतों पर वे अपने नाटकों के जरिए ऐसी मीठी और तीखी चोट करते थे कि श्रोता हंसते हंसते बहुत गहरी बात समझ जाते थे। उनका अंदाज इतना अपनापन लिए होता था कि जब वे रेडियो पर बोलते तो लगता था जैसे घर का ही कोई बुजुर्ग दलान में बैठकर आपसे बतिया रहा हो।
2: नमस्कार, आई एम विनायक राजदान। आई वॉज बॉर्न इन द 1980s, टू लेट टू हैव हर्ड पुष्कर बान लाइव ऑन द रेडियो। मचामा हैड ऑलरेडी एंटर्ड द कश्मीरी सोल लॉन्ग बिफोर आई कुड अंडरस्टैंड इट, सो आई डोंट प्रिटेंड टू स्पीक एज अ विटनेस टू हिज गोल्डन एरा। I can only speak as someone who found his work much later and was moved enough to want to preserve it. At Search Kashmir, we have archived pieces like Sindbad Machama along with its script and some of his television and radio interviews and documentaries, all generously shared by his own family. And that to me is where his greatness truly lies. Because his work does not need its audience to be present. It survives, it waits, it finds new listeners across time, people like me born decades later, who can still laugh at Machama and still learn Kashmiri from his satire. That is Pushkar Ban's rare legacy. My humble salute to a voice that refuses to fade. Thank you.
0: आइए अब बात करते हैं उनके किरदारों और प्रस्तुतियों की। अभिनय और लेखन के मोर्चे पर उनका गढ़ा और जिया हुआ किरदार मचामा कश्मीरी साहित्य और रेडियो के इतिहास में अमर है। मचामा सीरीज, हीरो मचामा, सिंदबाद मचामा के नाटक इतने लोकप्रिय हुए कि लोग अपने सारे काम छोड़कर रेडियो के पास बैठ जाते थे। इसके अलावा उनका और सोमनाथ साधु जी का लिखा और प्रस्तुत किया गया ऐतिहासिक रेडियो फीचर जून डब लगभग 19 सालों तक बिना थमे चला। झुंडब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, بلکہ کشمیری پریواروں کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن گیا تھا جس نے ساماجک جاگرکتا پھیلانے میں اہم بھومکا نبھائی. زونڈب کیول ایک ریڈیو شو نہیں بلکہ کشمیری سماج کا آئینہ بھی تھا. پشکر بان جی کے کشل نردیشن اور ابھینے کے ساتھ یہ کارکرم بنا رکاوٹ لگاتار بہت سالوں تک چلتا رہا. یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اگر میں اپنی ویکتیگت بات بتاؤں, جب ہم بہت چھوٹے تھے تب سے ہم اس کارکرم کو ریڈیو کشمیر سری نگر پر سنا کرتے تھے. چھوٹے ہوتے ہوئے ہمیں یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ پروگرام کس کے بارے میں ہے, پر یہ پتا تھا کہ یہ ایک ایسا فیچر ہے جو ہر دن ریڈیو کشمیر سری نگر پر آتا تھا. میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آج اس مہان ویکتی کے 100ویں جنم دیوس پر میں یہ کارکرم پرستت کر رہا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ.
3: Some voices never vanish. They become the heartbeat of generations. Shri Pushkar Bhan, the golden voice of Kashmir, a recipient of the Padma Shri and the Sahitya Akademi Award. He enriched generations through his unforgettable performances. Through beloved characters like Zundab and Machama, he brought joy, warmth, and the spirit of Kashmir into countless homes. His voice still echoes. His legacy continues to inspire. Join his legacy.
0: آپ سن رہے ہیں FM 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستہ, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری. 26 اگست 2026 کا دن کشمیری کلا سنسکرتی اور ریڈیو پرسارن کے اتہاس میں ایک سورنیم دن ہے. آج ہم کشمیر کے مہان پرسارک, کشل ابھینیتا اور نردیشک کی 100ویں جینتی منا رہے ہیں. اس خاص موقع پر ان کی سمرد وراثت, ریڈیو اور رنگ منچ کے اس دور کی یادیں اور اس امر نام کو جیوت رکھنے کے پریاسوں پر چرچا کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر آپ کے ساتھ ہیں. میں بات کر رہا ہوں آدرنیہ پشکر بان جی کی, جو ریڈیو کلا اور تھیٹر میں ایک بہت بڑا نام ہے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پوتے شری دیپک بان جی. آئیے ان سے کرتے ہیں بات, جانتے ہیں اس لیجنڈ کے بارے میں. تو شروتاؤ, آئیے آپ سبھی کو میں روبرو کرتا ہوں آج کے ہمارے آمنترت مہمان شری دیپک بان جی کے ساتھ. دیپک جی, آپ کا بہت بہت سواگت ابھینندن ریڈیو ویتستا FM 90.0 میگا ہرٹز کے اسٹوڈیو میں.
4: نمسکار, تھینک یو بھرت جی. یہ بہت ہی ایک پریولیج ہے میرے لیے, بہت آنر ہے یہاں پہ آنا, خاص کر اس موقع پر جہاں پہ کہ میرے دادا جی جو شری پشکر بان جی ہیں ان کا ایک 100th برتھ ڈے سینٹینری سیلیبریشن ایئر ہم منا رہے ہیں. میں ان کا پوتا دیپک بھان اور آج کل جو ہے ہم لوگ جموں میں سیٹلڈ ہیں. ان کے بارے میں جو بھی پتا ہے مجھے, جو دیکھا ہے, گھر میں محسوس کیا ہے, ایک ماحول جو بنا تھا ان کے ساتھ, تو اس پہ آج میں جو بھی چرچا ہو سکتی ہے اس وشے پر میں بتاؤں گا.
0: بہت بہت دھنیواد دیپک جی, اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ ایک ایسے لیجنڈ کی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں, ان کو اور نزدیک سے جاننے کی کوشش کریں گے, جن کو ہم نے بچپن سے ریڈیو کشمیر سری نگر سے سنا ہے. کئی سارے کردار, کئی سارے پروگرامز, اور جن پروگرامز نے ہماری زندگی پر ایک امٹ چھاپ چھوڑی ہے. آئیے جانتے ہیں دیپک جی سے مہان ویکتتو کے بارے میں. دیپک جی, میں آپ سے کچھ پرشن کروں گا. میں اور ہمارے ساری شروتا اس مہان ویکتتو شری پشکر بان جی کے بارے میں جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے وراثت اور یادوں کے بارے میں. آپ سے جاننا چاہیں گے ہم 100ویں جینتی کے اس ایتہاسک پڑاؤ پر आप अपने दादाजी को याद करते हुए आज आपको कैसा महसूस हो रहा है?
4: जी, मैं तो ये भूलूंगा कि ये कैसे गर्व की बात है, ये कैसी फीलिंग है जो कि शायद शब्दों में बयान ना हो सके, क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में भी बताया, वो एक सिर्फ एक नाम नहीं थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे लीजेंड रह चुके हैं कश्मीर के
0: जी,
4: कि शायद ही जिनके बारे में जितना बोले उतना कम है
0: जी।
4: बट मैंने जो उनको देखा है वो उस मौके उस मुकाम के बाद से देखा है जब वो एक अपने पीक पे सारी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, और तब भी उस इंसान में जो है एक जो रहता है अपना काम करने का जुनून और लोगों के साथ जुड़ने का, उनकी समस्याएं हो चाहे उनको हंसाना हो, वो चीज़ें कभी उन्होंने छोड़ी नहीं। मेरा जन्म तब हुआ था जब उनको ऑलरेडी पद्मश्री मिला था, जब उनको ऑलरेडी साहित्य अकेडमी मिला था, जब उनका मचामा जूंडब ऑलरेडी पीक पर सब जा चुका था
0: जी।
4: तो उसके बाद से जो मैंने उनको देखा है और जो उनके बारे में घर में जितना हम सुनते थे और जितना मेरा उनसे इंटरेक्शन है, मैं तो यही बोलूँगा कि इट इज़ नॉट लेस देन ए ऑनर कि उनके बारे में मुझे मौका मिल रहा है कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ आज। और ऐसा ओकेजन है कि अगर वो आज होते हमारे बीच तो 26 अगस्त आज उनका एक 100th बर्थडे होता
0: जी। हमें भी बहुत खुशी है कि आज उनका 100वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं, और हमारे लिए और रेडियो विदस्ता के लिए और रेडियो विदस्ता के श्रोताओं के लिए इससे अच्छा दिन कोई भी नहीं हो सकता है। इस दिवस पर हम आपसे बात कर रहे हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन की कोई ऐसी खास याद जो आज भी आपके दिल के करीब हो, जिसने आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला हो।
4: बचपन में ऐसा था, जब भी उनका काम होता था, वो बहुत सारे झुंडब और बाकी चीज़ों के अलावा रेडियो में बहुत सारे और प्रोग्राम भी करते रहते थे, और ग्रास रूट लेवल से जुड़ते थे वो। उनका था कि अगर

0: या छोटी सी चीज है, कहीं सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए तो एक ऐसा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, एक ऐसा वेलकम साउंड को मिलता था कि जब मैं आज देखता हूँ तो लगता था कि बहुत ही एक VVIP टाइप की पर्सनैलिटी थी
1: जी।
0: पर मेरे घर में रहना उनका जो एक था एकदम सिंपल, बहुत ही अच्छा, और कभी वो फीलिंग तब नहीं आई। तो ये उनकी जो चीज़ें हैं जब मैं आज देखूं, याद करूं, तब मुझे एहसास होता है कि उनका काम था ये जिसने उनकी ऐसी एक पहचान बनाई। और उस जमाने में कोई इंटरनेट नहीं, कोई उतना टेलीविजन नहीं था कि लोग जाने,
1: सोशल मीडिया नहीं था,
0: सिर्फ एक आवाज और एक रेडियो
1: जी।
0: उस किरदार से वो जाने जाते थे
1: जी।
0: एंड जूंडम में अगर उनका जो किरदार था मामा पिप जी का या मचामा का, तो एक लोकल पॉपुलेशन को उसी से पता था कि अच्छा मामा जी आओ, मामा जी आ गए। ये नहीं पता था कि ये पुष्कर भान कौन चेहरा है उसके पीछे,
1: यानी कि किरदार से उनको,
0: किरदार
1: लोग
0: से
1: पहचानते थे,
0: लोग उनको पहचानते थे। वो एक नाम था, जब उनको पता चलता था अच्छा मामा जी है तो ये पुष्कर भान जी है, वो था।
1: इसके साथ जुड़ा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा दीपक जी, कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कितना गहरा प्रभाव उनकी जिंदगी का आपके ऊपर है, जब आप उनके साथ जाते थे, जब आप वो वातावरण में लोगों के साथ बात करते हुए देखते थे, तो क्या पुष्कर भान जी ने लोगों पर भी ऐसा ही प्रभाव डाला था?
0: हाँ बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि लोगों पर एक ऐसा प्रभाव था कि जो लोग हैं उनको लगता था कि एक ऐसे माध्यम है, ये एक ऐसी आवाज है कि उनकी जो परेशानी हो, उनका कोई ऐसा काम जो कहीं हो नहीं रहा हो, सरकार से नहीं हो रहा हो, चाहे पर्सनल नहीं हो रहा हो, कि ये मामा जी है जिसके थ्रू होगा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि उस टाइम पे शायद मैं 4-5 साल का बच्चा नहीं समझ पा रहा था, पर बाद में जाके और अब जाके मैं उस चीज को जब रिलेट करता हूँ आज की टाइम से या जनरेशन से, तब मुझे लगता है कि वाकई में वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि मतलब जो उन्होंने छाप छोड़ी है, उसी छाप का ये असर है कि आज 100 साल के बाद भी चाहे उनकी जनरेशन हो या मेरी जनरेशन और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, उनको याद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस लीजेंड की लीगेसी हमेशा आगे भी चलती रहे।
1: एक कलाकार, निर्देशक और प्रसारक के रूप में घर का माहौल में उनकी क्या भूमिका रहती थी? जैसे आपने अभी बात की
0: जी,
1: तो घर में क्या वो मचामा थे या एक साधारण से घर के बड़े व्यक्ति थे?
0: घर में एकदम मैं ये बोलूंगा कि उनका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ टोटली डिफरेंट। कि रेडियो पे उनका जो किरदार, या जब मैं बाद में उनके कुछ नाटक सुनता था रेडियो के, तो मैं कहता था कैसे उसमें हंसा रहे हैं लोगों को, कैसी ऐसे आवाजें निकाल रहे हैं, और घर पे एकदम नॉर्मल रहते थे। इवन जैसे आप जूंडब भी अगर सुनेंगे तो जूंडब में जो उनका रोल है एक हाउस सर्वेंट का है
1: जी,
0: और वो थोड़ा तुतला के बोलते हैं।
1: ओके,
0: तो मैंने कहा ये तो घर पे तो ऐसा कभी नहीं बोलते और वहां पे ऐसा बोलते हैं,
1: ये उनकी कला थी।
0: मचामा में आप देखेंगे अलग अलग सी आवाजें निकालना, एंड हमेशा वो कुछ ना कुछ लिखेंगे, नोट करेंगे। उनकी एक डायरी होती थी साथ में, पेपर होता था, जहां उनको कुछ दिखे वो बस नोट कर देते थे और कहीं ना कहीं फिर उसको अपने वो रेडियो के प्रोग्राम में कहीं लाते थे। खासकर जैसे घर के कुछ कोई भी छोटी छोटी चीज़ हो, उस समय कोई इतना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर अगर आप उनके प्रोग्राम में सुनेंगे, जैसे मचामा सीरीज़ है 60-70s की है, उसमें हेलीकॉप्टर की आवाज़, एक दूसरी दुनिया में एलियन की आवाज़, या कुछ वैसा स्पेस क्राफ्ट की आवाज़ निकालना, जो अवेलेबल चीज़ें होती थी उनसे बनाते थे। तो वो भी एक ऐसी कला है जो आजकल शायद अब टेक्नोलॉजी ने उस चीज को चेंज कर दिया।
1: जी, सभी श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो आप ये सामुदायिक रेडियो FM 90 रेडियो विस्तार सुन रहे हैं, इसको चलाने वाली संस्था है वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अम्बाला। हम भी थिएटर और मंच से जुड़े हैं। मैं बहुत अच्छी से समझ सकता हूँ कि रेडियो जब नाटक हम तैयार करते हैं उसको एडिट करना कितना मुश्किल है, हम स्टेज पर जब नाटक करते हैं वो इतना मुश्किल दर्शाना नहीं है, जबकि रेडियो पर उसको एडिट करके तैयार करके आप तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। जैसे अब तो हमारे पास इंटरनेट से सारी आवाजें मिलती, चाहे आपको गाड़ी की सायरन की आवाज मिले, चाहे आपको भैंस की आवाज मिले, चाहे कोई भी, पर उस जमाने में जैसे दीपक जी कह रहे हैं तो ये तो एक बहुत ही कला की बात थी। दीपक जी, अब हम बात करते हैं कलात्मक योगदान और कश्मीर रेडियो की, रेडियो कश्मीर श्रीनगर की। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कश्मीरी कला, रंगमंच और रेडियो प्रसारण के स्वर्ण युग में आपके दादाजी का जो योगदान रहा, उससे आप किस रूप में देखते हैं?
0: जितना उन्होंने, जैसा कि शुरू में भी बताया गया था कि एक ऐसे एक सन ऑफ सॉइल की उन्होंने जिंदगी जी है
1: जी।
0: जैसे कि आपको पता ही होगा

0: जब वो शुरू में उन्होंने अपना रंगमंच या नाटक शुरू किया
1: जी,
0: वो बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे में उनको जॉब मिली, वहां पे उनको थिएटर में चले गए, अपना इप्टा के उर्दू सेक्शन के सेक्रेटरी बने, हिंदी मूवी दरवाजा में उनको ऑफर मिला था, और भी बहुत सारे उस समय के जो कलाकार थे, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर जी, बलराज सहनी जी, सबके साथ उनको मौका मिला काम करने का
1: जी।
0: पर वो वापस अपना कश्मीर आए, श्रीनगर आए, और उनको लगा कि मेरी एक्चुअल जो मेरा काम है यहाँ कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ पे करना है। तो एक ऐसा इंसान जो बॉलीवुड को भी छोड़ के कश्मीर में आ जाए और उसके बाद एक रेडियो में रहे, रेडियो प्रोग्राम में रह के उन्होंने जो अपनी एक विरासत, अपनी एक धरोहर बनाई, वो एक ये है कि काबिले तारीफ तो है ही है, बट उतना आसान भी नहीं है। और साथ में उनके जो एक ड्रीम्स थे, बोलूँगा अगर, एक्टिंग के थे, वो भी उन्होंने साथ में कर लिया। उन्होंने जो मूवीज़ में काम किया, मोइंजरात में, शहर आजम कश्मीर महजूर में, और बहुत सारे स्टेज प्लेज, तो अपना उन्होंने वो भी साथ साथ में चलाते रहे। और अब पूरे 100 साल के योगदान में अगर हम उसको देखें, एक समरी के रूप में देखें, तो एक ऐसी चीज़ है कि उनका जो एक एम था कि सबको हंसाना है, ज़िंदगी एक ऐसी है कि हंसते हंसते ही निकलनी चाहिए
1: जी।
0: वो उनका मेन रहा था, ह्यूमर सटायर जो उन्होंने हर चीज में डाल के रखा था
1: जी। दीपक जी, रेडियो और थिएटर के प्रति उनके समर्पण का कोई ऐसा किस्सा जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सकती है?
0: आजकल का यही कि आजकल की युवा पीढ़ी, जैसे जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आई है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा आपके पास अब रिसोर्सेज हो गए हैं, पर यही मैं कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी है
1: जी,
0: कि जिस चीज़ पे आप अड़े हैं, जो आपने करना उस पर करते रहिए, सफलता मिलेगी आपको, उसका फल मिलेगा। जैसे पुरानी कहावत है, इंतज़ार का फल मीठा है
1: जी।
0: तो आजकल की जनरेशन चाहती है हमको बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाए, शॉर्टकट कैसे ले लें, जल्दी से जल्दी कैसे कामयाबी मिले, बट अगर उनका एग्जांपल देखा जाए, ये सारी चीज़ें टाइम लेती हैं, बट उसके बाद जो फल मिलेगा वो ऐसा मिठास देगा कि दुनिया याद रखेगी। और जैसे हम आज उनको याद कर रहे हैं, वैसे सब आपका काम, कार्य, कला सबको याद करते रहेंगे।
1: बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को खास करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि तरक्की और जिंदगी में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो क्या आप इससे सहमत हैं?
0: एकदम सहमत है।
1: अब हम बात करते हैं विरासत को जीवित रखने के प्रयास, खास करके ये दीपक जी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आप अपने काम में इतने व्यस्त है और उसके बावजूद भी आप अपने जो दादाजी की विरासत है, जो उन्होंने काम किया है, जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, आप उनके संपर्क में है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको आशीर्वाद भी देते होंगे, क्योंकि दीपक जी पुष्कर जी के पोते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दादाजी के नाम और उनके महान कलात्मक कार्यों को जीवित रखने के लिए आपने और आपके परिवार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए?
0: जैसा कि हम सबको पता है, एक 100th सेंटेनरी ईयर चल रहा है उनका
1: जी।
0: तो जो परिवार, एक जैसे मैं बताऊंगा, दादाजी का जो परिवार, उनके एक बेटा जो मेरे पिताजी थे वो अभी रहे नहीं है, वो भी सर्वस्व हो गए हैं
1: जी।
0: और उनकी एक बेटी जो मेरी बुआ है वो दिल्ली में सेटल्ड है, तो ये उनका परिवार है। एंड उनके जो बच्चे, चाहे मेरी बुआ के बच्चे और मैं हो गया इस साइड से, मेरी मदर जो साथ में है मेरे, और जो अपना छोटा सा परिवार है, तो हमने डिसाइड किया इस साल में कि इस 100th सेंटेनरी ईयर को कैसे एक स्पेशल बनाया जाए
1: जी।
0: क्योंकि एक उनकी लीगेसी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लीगेसी कहीं ख़त्म हो जाए, रुक जाए, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सारी मिसालें हैं इसमें। तो सारे परिवार ने फिर बोला कि इसको कुछ हमें ऐसा करना चाहिए इस साल में कि ये इनकी जो काम है, इनके बारे में जो है, अभी तक तो सबको पता है पर आगे जाके कैसे पता रहे, उसके बारे में कुछ हमने सोचा। और टेक्नोलॉजी अब ऐसी है कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उस पर इनके बारे में, इनके काम को डालेंगे, इनके बारे में डालने से वो चीज़ें एक डिजिटलाइज फॉर्मेट में भी रह रही हैं, कि कल को अगर कोई दूसरी जनरेशन भी इनके बारे में जानना चाहे तो कहीं भी इंटरनेट पर सर्च मारेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में निकल आएंगी जो अभी तक शायद नहीं थी। हालांकि वैसे भी बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी है इनके बारे में, बहुत लोगों ने लिखा है या आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बट फिर भी एक फैमिली की तरफ से बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो शायद ओपन सोर्स में, ओपन इंटरनेट पे पता नहीं होता है
1: जी।
0: तो सारे मेरे जितने भी जो मेरी बुआ हैं, जो उनके मेरे उफा जी हो गए, मेरे कज़न्स हो गए और मेरी वाइफ, बाकी बच्चे, सबका योगदान है, मदर का भी जितना उनके साथ रही हैं, तो इन सब के योगदान से इन्होंने पूरे फैमिली मेंबर्स ने एक उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं जिसमें उनके जो है कार्य को दर्शाया जाता है, एंड वहाँ से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जिनको पता नहीं था इस बारे में, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हर जगह से आ रही है और ये कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। ये पूरा साल हम एक मना रहे हैं ईयर ऑफ सेंटिनरी फॉर द ट्रिब्यूट टू श्री पुष्कर भाल जी।
1: यानी कि आप कोशिश ये करते हैं कि जो उनके काम है, जो उन्होंने अपना योगदान अपने राज्य को अपने देश को दिया है, आप चाहते हैं कि जितने भी युवा और बाकी लोग हैं उनको उनसे उनके काम से प्रेरणा मिले।
0: जी एकदम।
1: आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उनके नाटकों, रेडियो स्क्रिप्ट्स या साहित्यिक कृतियों को सहजने और डिजिटल रूप में संरक्षित करने की कोई योजना बनाई गई है? क्या उनके जो लिखे हुए जो स्क्रिप्ट्स है, क्या आप लोगों ने उसको डिजिटल रूप में आपने तैयार करने की कोशिश की है या चल रही है?
0: इसमें जो है उनके जो पुराने स्क्रिप्ट्स थे, जैसा कि आपको पता है कश्मीर से निकलने के बाद जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह उनकी थी जुंडर की, मचान वो खत्म हो गई हैं क्योंकि वो मिल नहीं रही हैं, थोड़े से कुछ पीछे फ्लड्स में चले गए थे। तो किसी किसी के पास जो हमारे साथ श्रोता जो जुड़ते रहते हैं कहीं से सुनते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू, जिनके पास कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं वो हमको भेज रहे हैं, वो अपलोड हो जाती हैं इंटरनेट पे भी और बाकियों को भेजा जाता है। एक तो वो तरीका उसको डिजिटाइज करने का रहा। उनके जो काम का था, जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखे थे, दुनिया भर के नाटक लिखे थे, प्रोग्राम लिखे थे, उसमें जो जो अवेलेबल है, हालांकि मैक्सिमम चीज़ें वो अपना उर्दू और कश्मीरी में लिखते थे एंड लिपि वो रहती थी उर्दू लिपि, तो हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखते थे। तो वो कुछ कुछ जो उनके नाटक है, कुछ जो उनके स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं हमारे पास, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक बार ट्रांसलेट भी करें हम हिंदी और इंग्लिश में, और साथ ही साथ उसको एक डिजिटलाइज्ड फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड भी करें ताकि जो है पूरी सारे आवाम, सारी दुनिया उनको पढ़ सके,
1: उनके हाथ के लिखे हुए स्क्रिप्ट्स हैं वो भी पढ़ सके,
0: उनके हाथ के खुद के हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स हैं जो कि उन्होंने 1950s और 60s में लिखे हैं
1: जी।
0: तो अभी तक वो एक रजिस्टर्स और फाइल्स प्रिजर्व करके हैं एंड उसको तो मैं ये बोलूंगा इट इज अ ट्रेजर, एक ऐसा एक ट्रेजर है वो कि वो जब बाहर आके उनको लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि एक राइटर की उसमें फीलिंग्स, इमोशंस और कैसे करेक्टर को एक आगे बढ़ाते हैं
1: जी। मैं इसके साथ आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, जब कोई भी डेटा, कोई भी डॉक्यूमेंट डिजिटाइज होता है तो वो हजारों साल के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा, जो आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी
0: सारी
1: वहां तक रहेगी, क्योंकि जो हमारे पास किताब में या कॉपी में जो स्क्रिप्ट लिखा है वो कहीं पढ़ा नहीं जा सकता है, बट अगर वो डिजिटाइज रूप में जाता है तो लोगों तक पहुंचाया जा सकता
0: जी
1: है।
0: जी।
1: इस कार्यक्रम के अंतिम रूप में कुछ और जानकारी मैं आपसे चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए, उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर क्या कोई विशेष ट्रस्ट, डॉक्यूमेंट्री, पुस्तक या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है?
0: जी अभी तक जो प्लान है वो ये प्लान है कि 21 नवंबर को जम्मू में अभिनव थिएटर में उनका एक प्रोग्राम रखा जा रहा है
1: जी,
0: जो कि अपना जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर एकेडमी
1: की ओर से
0: भी वो कोलैबोरेट कर रहे हैं साथ में
1: जी।
0: एंड उसमें ये है कि उनके बारे में जो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, कुछ पुराने आर्टिस्ट हैं वो उसमें शामिल होंगे, इनके जो काम है तो उसको थोड़ा हाईलाइट कराया जाएगा और इनकी जीवनी पे एक बायोपिक मूवी भी बन रही है तो उसको भी शायद उसमें हम पेश करेंगे
1: जी।
0: तो ताकि मैक्सिमम लोग इसमें जुड़ें, मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज़ें जाएं, मैक्सिमम लोग इस चीज़ों को देखें और सबको ये जानकारी मिल जाए उनके बारे में।
1: दीपक जी अगर कशिर पेट कात करो तो हिंदी दादा जी इमजन गरस मंस या पनन कम इस करा कशिर जबीन मंस कित कन करियो तो पनन दादा जी याद
0: बुमारा दपो बस के तिमसक हित शख्सियत के खली है कुदबे की नमन गए सासुन इथे नफरन
1: जी
0: के वंचुस बतहुन सु पूर कम उछान तीन रिकॉर्डिंग बोजान और चुवन तरन फिक्री की
1: जी हाँ श्रोताओं, मैं यहाँ पर रेडियो विदस्ता परिवार की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से इस महान व्यक्तित्व को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाई जाए ताकि हमें उससे प्रेरणा मिल सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 साल के बाद भी हम उनके काम को देख रहे हैं, उनके काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ तो जरूर था जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, लाना चाहिए। आखिर में दीपक जी, मैं आपसे भावी पीढ़ी के लिए संदेश के रूप में आपसे जानना चाहूंगा कि नई पीढ़ी के रेडियो कलाकारों, थिएटर निर्देशकों और प्रसारकों के लिए आप अपने दादाजी के जीवन से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: उनके जो जीवन का पूरा एक संदेश ये है कि मेहनत का कोई और ऑप्शन या कोई और सेकंड शॉर्टकट नहीं है
1: जी।
0: मेहनत करनी है, उसका सफल आपको मिलेगा, और लोगों के लिए करना है। अपने लिए तो हम सब करते ही हैं, पर जहाँ पे हम लोगों के लिए करते हैं, लोगों को जो पसंद है, चाहे उनकी समस्याएं हो, चाहे उनको हंसना हो, चाहे उनको भावुक होना हो, जब हम उनकी फीलिंग्स को समझ के उनके लिए कुछ करते हैं और उनके जो ब्लेसिंग्स होती हैं, शायद उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। बाकी अवार्ड्स तो मिलते रहते हैं सबको, बट एक लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो एक ऐसी चीज है, अगर आपने वो कमा ली तो शायद
1: सबसे बेस्ट अवार्ड वही है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आज पहली बार आए
0: जी,
1: पहला दृश्य आपको यहाँ का कैसा लगा और आपको यहाँ आके कैसा लगा, हम ये जानना चाहेंगे।
0: मेरा ये पहला एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी रेडियो स्टूडियो में खुद ऐसे आना, हालांकि देखा तो था मैं जब मैं जाता था अपने दादाजी के साथ भी
1: जी।
0: लेकिन आज एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक उस शख्सियत के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, रेडियो के महान कलाकार, और रेडियो से ही आज एक उनके बारे में एक ट्रिब्यूट जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, तो शायद इससे अच्छी और कोई कनेक्शन हो नहीं सकता है कि एक रेडियो पर्सनैलिटी के लिए रेडियो से उनके बारे में मैसेज जा रहा।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि हम खुशनसीब है, रेडियो विदस्ता का पूरा परिवार, रेडियो विदस्ता की टीम, हम खुशनसीब है कि एक ऐसे रेडियो कलाकार की हम आज बात कर रहे हैं। शायद हमारा वजूद भी तभी हुआ है जब रेडियो एक जमाने में और आज भी प्रासंगिक है, और आज भी लोग अपनी जो एंटरटेनमेंट है उसको काम करते हुए रेडियो को सुनते रहते, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हम गाड़ी में सफर कर रहे हो। और आज के जमाने का डिजिटल रेडियो है जो आप रेडियो पे तो सुनते ही हैं, साथ में आप इंटरनेट के माध्यम से भी उसको सुनते हैं। खैर दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू भरत जी, एंड पूरी रेडियो विदस्ता टीम को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि जिनकी वजह से हम आज ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: नमस्कार।
2: आई एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड भूषण लाल भाम AVSM VSM फील ऑनर्ड टू गिव माय तासुरात इम्प्रेशन अबाउट माय अंकल ने एल्डर ब्रदर हुम आई कॉल्ड पापा जी। I spent my childhood to college days with him from the age of 8 years, before I joined the Indian Air Force, as my parents had moved to Mumbai. Papaji, before joining the Radio Kashmir, went to Mumbai to stay with his elder brother, Pandit Dinanath Ban. Understandably, he established contact with Shri Prithviraj Kapoor and Shri Raj Kapoor and gave some memorable performances and dramas and plays. He was also offered roles in movies, but son of the soil refused, instead preferred to return to his hometown, Srinagar. A turning point in the career came when he joined Radio Kashmir. His first broadcast, which to my in my memory showed, was titled Nizasab Kontakak, while he acted as Kontakak. The show brought to him to the notice of the public. I have a wealth of information about this extremely talented, noble, and great human being. Sufficient enough to write a book on his activities and achievements. May God Almighty bless this noble soul in Vaikunth. Kabhi kabhi aise didavar paida hote hain, aur na hi apna बल्कि वतन का नाम भी रोशन करते हैं। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।
3: साहित्य और कला के क्षेत्र में उनके इस अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उनकी अद्वितीय कलात्मक देन के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। पद्मश्री 1974, कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976, उनके महान साहित्य कार्य और नाटकों के लिए। नीटा ICCE अवार्ड 1985, कला और प्रसारण में श्रेष्ठता के लिए। सादिक मेमोरियल अवार्ड और इसके अलावा भी कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें प्रदान किए गए। इतने सारे सम्मान ये दर्शाते हैं कि पुष्कर भानजी का योगदान सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश ने उनकी प्रतिभा को सराहा। रेडियो के अलावा उन्होंने अभिनय जगत में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। सुपरहिट कश्मीरी फिल्मों मजरात और शायरे कश्मीर महजूर में उनके अभिनय को आज भी शिद्दत से याद किया जाता है।
1: अक्टूबर 2008 में ये महान कलाकार इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज भी रेडियो के आर्काइव्स और देशवासियों और कश्मीरियों के दिलों में उनकी वो खनकती हुई आवाज गूंजती है। एक फनकार कभी नहीं मरता, वो अपनी कला में हमेशा जिंदा रहता है। किसी शायर ने ऐसे ही महान फनकारों के लिए कहा है, आवाज मेरी मेरे बाद भी गूंजेगी फिजाओं में, मैं वो नगमा हूं जो कभी पुराना नहीं होता। इतने सारे सम्मान ये दर्शाते हैं कि पुष्कर बानजी का योगदान सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश ने उनकी प्रतिभा को सराहा। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम विस्तृत कार्यक्रम इस महान व्यक्तित्व पर आपके समक्ष फिर लाएंगे। ऐसी ही किसी अन्य दिलचस्प दास्तान के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक आप सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। और इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे इजाजत।
3: मुझे अच्छा लगा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनके, और अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे एक श्रद्धांजलि स्वरूप स्पेशल प्रोग्राम एट्रिब्यूट टू पद्मश्री श्री पुष्कर वांजी। प्रोग्राम प्रस्तुत किया भारत सोपोरी और अनु ने। विशेष धन्यवाद श्री दीपक बांजी का। सहयोग आरजे किरणी का। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा ही देश का भविष्य। आज के आमंत्रित मेहमान हैं श्रुति सयाल, विशेष आभार ईशान खन्ना, सहयोग आरजे गिरनी, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

0: नमस्कार, प्रणाम और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली। आज हमारे खास प्रोग्राम युवा ही देश का भविष्य में एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो न केवल तकनीक की दुनिया में माहिर है बल्कि कला और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक चमकता सितारा है। हमारे साथ है श्रुति सयाल, जो वर्तमान में बिजनेस एनालिस्ट हैं और साथ ही अपनी MCA की पढ़ाई भी कर रही हैं। श्रुति, आपका रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भारत जी, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस रेडियो स्टेशन पर आऊं और अपने विचार प्रकट करूं। धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: श्रुति, आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं और बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका काम असल में है क्या।
1: मेरा काम असलियत में ये है कि हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारा बिजनेस ये है और हमें इस बिजनेस को डिजिटल करना है, अपनी एक वेबसाइट बनवानी है, हमें टेक्निकल वर्ल्ड में कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, अपना प्रमोशन करा सकते हैं सोशल मीडिया पर, गूगल पर और भी बहुत से स्थानों पर, जिससे वो अपनी मार्केटिंग कर सके और उनका बिजनेस बढ़ सके। तो हम उनके सिनेरियो को देखते हुए जो भी जिस भी कंडीशन में वो लोग हैं उनको सजेस्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उनसे कम्युनिकेशन के बाद हम एक सॉल्यूशन पर आते हैं और उसके साथ हम आगे जाते हैं।
0: आपसे जानना चाहूंगा, जब आप कोई भी समाधान देते हैं किसी क्लाइंट को, तो आप उनसे क्या क्या जानकारी पहले लेते हैं ताकि आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकें।
1: हम बेसिकली उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं कि क्या वो एक रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक हैं या फिर उनकी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। उसके अकॉर्डिंग हम उनकी एक रिक्वायरमेंट को एक गैदर करके एक प्रपोजल बनाते हैं, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट की उनके बिजनेस को क्या क्या डिजिटली प्रेजेंस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। क्या उन्हें वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है या फिर उन्हें ऑनलाइन प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम एक स्कोप ऑफ वर्क बनाते हैं। उनकी वेबसाइट में क्या क्या होगा, क्या हम उन्हें डिज़ाइन कैसा देंगे, किस टेक्नोलॉजी में उनकी वेबसाइट बनाएंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे, फिर उनकी वेबसाइट को सर्वर पर डिप्लॉय कर देंगे। अगर वो मार्केटिंग में चाहते हैं तो हम उनकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करेंगे या फिर हम गूगल पर उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे।
0: आप एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम करती हैं, तो आपने पढ़ाई खत्म करने के बाद अब आप जॉब करती हैं, तो एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर जब आप किसी भी क्लाइंट को समाधान देते हैं तो दिल में, मन में कितनी संतुष्टि होती है?
1: बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है। मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं चाहती तो अपनी कोडिंग करियर भी परस्यू कर सकती थी आगे, पर मैंने ये प्लेटफॉर्म बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन इसलिए चुनी जिससे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, उन्हें एक समाधान दे सकूँ अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं।
0: श्रुति, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपसे अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त सा इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे श्रोता आपको और अच्छे से जान सके।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यंग जनरेशन से बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ फॉर श्योर, बहुत थैंक यू सो मच। बट अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊँ तो ये है कि मेरा नाम श्रुति है, मैं 22 साल की हूँ, अम्बाला में रहती हूँ और एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ। जस्ट मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई थी लास्ट ईयर और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज में वर्क करने की। एज एन इंटर्न मैं वहाँ पर गई थी, उसके बाद मैंने कोडिंग में अपना पैर जमाया, कोडिंग सीखी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट पूरी करी, बट वो कहीं ना कहीं जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, मेरे कॉलेज टाइम का, मेरे स्कूल टाइम का, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े रहे और वहाँ की कंपनी के बॉस ने मुझे मौका दिया कि क्यों ना आप अपने स्किल्स को आगे और कंटिन्यू करो और हमारी कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट रोल परस्यू करो। तो उसके साथ ही मैं आगे अब बढ़ती जा रही हूँ और इसी को आगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आगे बढ़ाऊंगी।
0: बहुत खूब। श्रुति, मैंने सुना है कि आप थिएटर यानी रंगमंच से भी जुड़ी रही हैं, स्ट्रीट प्ले और वन एक्ट प्ले का अनुभव आपके प्रोफेशनल करियर में कैसे काम आता है?
1: स्ट्रीट प्ले हो या वन एक्ट प्ले, हर जगह पर आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। हमें कुछ भी लाइफ में करना है उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, क्लाइंट से नहीं तो अपने कलीग से बात करती हूँ, डेवलपर से बात करती हूँ, डिज़ाइनर से, टेस्टर से, किसी भी इंसान से मैं बात करती हूँ, तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सामने वाले के सामने हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। हो सकता है कि हमारी नॉलेज बहुत अच्छी हो बट अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस बात को बोलने का तो शायद हम उतने अच्छे से काम ना कर पाए। तो हाँ, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है या फिर मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है तो ये जस्ट बिकॉज मैं थिएटर में थी, मेरे कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ।
0: श्रुति, जहाँ तक रंगमंच का सवाल है, रंगमंच हमेशा हमें एक अच्छा इंसान बना देता है, हमें वो एज अ पर्सन ग्रो होने का मौका देता है, हमें बोलने का कॉन्फिडेंस देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप थिएटर के साथ जुड़ी हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हैं, तो ये आपके करियर में आगे भी बहुत सारा हेल्प करता रहेगा। आपके लिए संगीत क्या मायने रखता है?
1: संगीत मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप अपनी फैमिली में होते हो या अपने आप जॉब पर होते हो, कहीं पर भी होते हो, आप एक सिनेरियो में एक सीक्वेंस के साथ आप काम करते रहते हो तो माइंड में बहुत सी चीज़ें आ जाती है। तो एक अच्छा म्यूज़िक जो होता है आपको टेंशन फ्री करता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, जिसे सॉफ्ट म्यूज़िक हम सुनते हैं या फिर पार्टी म्यूज़िक सुनते हैं, वो एकदम से मूड स्विच कर देता है।
0: तो आप मानते हैं कि म्यूज़िक एक थेरेपी हमें देता है? और अगर ऐसा है तो आप किस तरीके का संगीत सुनते हैं? आपकी पसंद का कोई भी गीत हो जो हम श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे कृपया बताएं।
1: मुझे वैसे तो बहुत से सॉन्ग्स पसंद है बट स्पेसिफिकली मैं रेट्रो म्यूजिक भी सुनना पसंद करती हूँ। तो उसमें मुझे लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, ये वाला गाना बहुत पसंद है।
0: आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी बिल्कुल,
0: प्लीज
1: लिखे।

0: आपने ट्यून किया है 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। और आपके साथ मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त भारत सोफोरी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज इस खास प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे,
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, और सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम कश्मीर की उस अजीम शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आवाज, अपने अभिनय और अपनी कलम से कश्मीरी कला, नाटक और प्रसारण जगत को एक नया मुकाम दिया। बात हो रही है महान कलाकार, प्रसारक, अभिनेता और निर्देशक आदरणीय पुष्कर बान जी की। कश्मीर का शायद ही कोई ऐसा बाशिंदा होगा जो उन्हें नाम से, उनके काम से या उनके घड़े हुए किरदारों से ना जानता हो। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से रेडियो और अभिनय के क्षेत्र में जो छाप छोड़ी वो अद्वितीय है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने भरत जी। पुष्कर भान जी का जन्म 26 अगस्त 1926 में श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। कला और रंगमंच के प्रति उनका प्रेम बचपन से ही गहरा था। 1952 में जब वे रेडियो कश्मीर श्रीनगर से बतौर कलाकार और नाटककार जुड़े तो उन्होंने प्रसारण की दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचा जो आज भी एक मिसाल है। पुष्कर जी सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर नहीं थे, बल्कि वे कश्मीर के आम आदमी के दर्द, खुशी और उनके सरोकारों की आवाज थे। क्या आप जानते हैं कि पुष्कर भान जी का सफर कैसे शुरू हुआ था? साल 1952 में महज 2.5 रुपए के दैनिक वेतन से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी बेमिसाल लेखन शैली और अदायगी के दम पर उन्होंने जल्द ही हर किसी को अपना मुरीद बना लिया। 2.5 रुपए, सोचिए, इतनी छोटी शुरुआत से एक इंसान ने इतना बड़ा सफर तय किया। लेकिन उनके अच्छे लेखन और अभिनय की उम्दा प्रस्तुति ने उन्हें जल्द ही पहचान दिलाना शुरू कर दी।
0: अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वे बेहद जमीन से जुड़े हुए, सरल और गहरी समझ रखने वाले इंसान थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका हास्य और व्यंग, ह्यूमर एंड स्टायर। समाज की कुरीतियों, भ्रष्टाचार और रोजमर्रा

0: long before I could understand it. So I don't pretend to speak as a witness to his golden era. I can only speak as someone who found his work much later and was moved enough to want to preserve it. At Search Kashmir, we have archived pieces like Sindbad Machama along with its script and some of his television and radio interviews and documentaries, all generously shared by his own family. And that, to me, is where his greatness truly lies. Because his work does not need its audience to be present. It survives. It waits. It finds new listeners across time. People like me, born decades later, who can still laugh at Machama and still learn Kashmiri from his satire. That is Pushkar Ban's real legacy. My humble salute to a voice that refuses to fade. Thank you.
1: आइए अब बात करते हैं उनके किरदारों और प्रस्तुतियों की। अभिनय और लेखन के मोर्चे पर उनका गढ़ा और जिया हुआ किरदार मचामा कश्मीरी साहित्य और रेडियो के इतिहास में अमर है। मचामा सीरीज हीरो मचामा सिंधबाद मचामा के नाटक इतने लोकप्रिय हुए कि लोग अपने सारे काम छोड़कर रेडियो के पास बैठ जाते थे। इसके अलावा उनका और सोमनाथ साधु जी का लिखा और प्रस्तुत किया गया ऐतिहासिक रेडियो फीचर जून डब लगभग 19 सालों तक बिना थामे चला। जून डब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था बल्कि कश्मीरी परिवारों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया था जिसने सामाजिक जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। जुंडब केवल एक रेडियो शो नहीं बल्कि कश्मीरी समाज का आईना भी था। पुष्कर बान जी के कुशल निर्देशन और अभिनय के साथ ये कार्यक्रम बिना रुकावट लगातार बहुत सालों तक चलता रहा। ये अपने आप में एक मिसाल है। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, जब हम बहुत छोटे थे तब से हम इस कार्यक्रम को रेडियो कश्मीर श्रीनगर पर सुना करते थे। छोटे होते हुए हमें ये पता नहीं चलता था कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है, पर ये पता था कि ये एक ऐसा फीचर है जो हर दिन रेडियो कश्मीर श्रीनगर पर आता था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज इस महान व्यक्ति के 100वें जन्म दिवस पर मैं ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ।
2: Some voices never vanish. They become the heartbeat of generations. Shri Pushkar Ban, the golden voice of Kashmir, a recipient of the Padma Shri and the Sahitya Akademi Award. He enriched generations through his unforgettable performances. Through beloved characters like Zundab and Machama, he brought joy, warmth, and the spirit of Kashmir into countless homes. His voice still echoes. His legacy continues to inspire. Join his legacy.
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। 26 अगस्त 2026 का दिन कश्मीरी कला, संस्कृति और रेडियो प्रसारण के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। आज हम कश्मीर के महान प्रसारक, कुशल अभिनेता और निर्देशक की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनकी समृद्ध विरासत, रेडियो और रंगमंच के उस दौर की यादें और इस अमर नाम को जीवित रखने के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर आपके साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय पुष्कर बान जी की, जो रेडियो कला और थिएटर में एक बहुत बड़ा नाम है। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ

0: मौजूद हैं उनके पोते श्री दीपक बान जी। आइए उनसे करते हैं बात, जानते हैं इस लेजेंड के बारे में। तो श्रोताओं, आइए आप सभी को मैं रूबरू करता हूं आज के हमारे आमंत्रित मेहमान श्री दीपक बान जी के साथ। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन रेडियो वितस्ता एफ एम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ के स्टूडियो में।
1: नमस्कार, थैंक यू भरत जी, ये बहुत ही एक प्रिविलेज है मेरे लिए, बहुत ऑनर है यहाँ पे आना, खासकर उस मौके पर जहाँ पे कि मेरे दादाजी जो श्री पुष्कर भान जी हैं उनका एक 100th बर्थडे सेंटिनरी सेलिब्रेशन ईयर हम मना रहे हैं। मैं उनका पोता दीपक भान और आजकल जो है हम लोग जम्मू में सेटल्ड हैं, उनके बारे में जो भी पता है मुझे, जो देखा है, घर में महसूस किया है, एक माहौल जो बना था उनके साथ, तो उस पर आज मैं जो भी चर्चा हो सकती है उस विषय पर मैं बताऊँगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और मैं भी खुशनसीब हूँ कि एक ऐसे लेजेंड की हम आज बात करने जा रहे हैं, उनको और नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे, जिनको हमने बचपन से रेडियो कश्मीर श्रीनगर से सुना है। कई सारे किरदार, कई सारे प्रोग्राम्स, और जिन प्रोग्राम्स ने हमारी जिंदगी पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं दीपक जी से महान व्यक्तित्व के बारे में। दीपक जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, मैं और हमारे सारी श्रोता इस महान व्यक्तित्व श्री पुष्कर बान जी के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विरासत और यादों के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे हम 100वीं जयंती के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर आप अपने दादाजी को याद करते हुए आज आपको कैसा महसूस हो रहा है?
1: जी, मैं तो ये भूलूंगा कि ये कैसे गर्व की बात है, ये कैसी फीलिंग है जो कि शायद शब्दों में बयान ना हो सके, क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में भी बताया, वो एक सिर्फ एक नाम नहीं थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे लीजेंड रह चुके हैं कश्मीर के कि शायद ही जिनके बारे में जितना बोले उतना कम है। बट मैंने जो उनको देखा है वो उस मौके, उस मुकाम के बाद से देखा है जब वो एक अपने पीक पे सारी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, और तब भी उस इंसान में जो है एक जो रहता है अपना काम करने का जुनून और लोगों के साथ जुड़ने का, उनकी समस्याएं हो चाहे उनको हंसाना हो, वो चीज़ें कभी उन्होंने छोड़ी नहीं। मेरा जन्म तब हुआ था जब उनको ऑलरेडी पद्मश्री मिला था, जब उनको ऑलरेडी साहित्य अकेडमी मिला था, जब उनका मचामा जूंडब ऑलरेडी पीक पर सब जा चुका था जी। तो उसके बाद से जो मैंने उनको देखा है और जो उनके बारे में घर में जितना हम सुनते थे और जितना मेरा उनसे इंटरेक्शन है, मैं तो यही बोलूंगा कि इट इज नॉट लेस देन ए ऑनर कि उनके बारे में मुझे मौका मिल रहा है कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ आज। और ऐसा ओकेजन है कि अगर वो आज होते हमारे बीच तो 26 अगस्त आज उनका एक 100th बर्थडे होता
0: जी। हमें भी बहुत खुशी है कि आज उनका 100वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं, और हमारे लिए और रेडियो वितस्ता के लिए और रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए इससे अच्छा दिन कोई भी नहीं हो सकता है। इस दिवस पर हम आपसे बात कर रहे हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन की कोई ऐसी खास याद जो आज भी आपके दिल के करीब हो, जिसने आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला हो।
1: बचपन में ऐसा था, जब भी उनका काम होता था, वो बहुत सारे झुंडब और बाकी चीज़ों के अलावा रेडियो में बहुत सारे और प्रोग्राम भी करते रहते थे, और ग्रास रूट लेवल से जुड़ते थे। वो उनका था कि अगर कोई चीज़ या कोई प्रोग्राम हाईलाइट करना है या किसी की समस्या है, किसी गांव की हो चाहे इंसान की हो, वो उस जगह पे जाते थे, वो उनकी खास बात थी
0: जी।
1: तो कभी कभी वो रिकॉर्डिंग के लिए निकलते थे, दूर दराज के गाँव में जाते थे तो मेरे को साथ लेके जाते थे, कहते थे आ जाओ घूमने चलते हैं। तो उस टाइम पर एक जीप होती थी, एक रेडियो, उनके पास टेप रिकॉर्डर रहता था साथ में, और मैं भी छोटा सा 4-5 साल का लड़का साथ में निकल जाता था उनके। मेरे लिए तो एक दादाजी थे जिनको मैं पापा जी बुलाता था, पर जब भी मैं उनके पास जहाँ भी जाता था वहाँ पे, उस समय शायद मुझे वो रियलाइज नहीं होता था कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे
0: जी।
1: कहीं भी गए, किसी गांव में जाते थे या किसी प्रोग्राम में गए या छोटी सी चीज़ है, कहीं सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए, तो एक ऐसा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, एक ऐसा वेलकम सा उनको मिलता था कि जब मैं आज देखता हूँ तो लगता था कि बहुत ही एक VVIP टाइप की पर्सनैलिटी थी
0: जी।
1: पर मेरे घर में रहना उनका जो एक था एकदम सिंपल, बहुत ही अच्छा, और कभी वो फीलिंग तब नहीं आई। तो ये उनकी जो चीज़ें हैं, जब मैं आज देखूं, याद करूं, तब मुझे एहसास होता है कि उनका काम था ये जिसने उनकी ऐसी एक पहचान बनाई। और उस जमाने में कोई इंटरनेट नहीं, कोई उतना टेलीविजन नहीं था कि लोग जाने,
0: सोशल मीडिया नहीं था,
1: सिर्फ एक आवाज़ और एक रेडियो
0: जी।
1: उस किरदार से वो जाने जाते थे
0: जी।
1: एंड जूंडम में अगर उनका जो किरदार था मामा पिप जी का या मचामा का, तो एक लोकल पॉपुलेशन को उसी से पता था कि अच्छा मामा जी आओ, मामा जी आ गए। ये नहीं पता था कि ये पुष्कर भान कौन चेहरा है उसके पीछे,
0: यानी कि किरदार से उनको,
1: किरदार
0: लोग
1: से
0: पहचानते थे,
1: लोग उनको पहचानते थे। वो एक नाम था, जब उनको पता चलता था अच्छा मामा जी है तो ये पुष्कर भान जी है, वो था।
0: इसके साथ जुड़ा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा दीपक जी, कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कितना गहरा प्रभाव उनकी जिंदगी का आपके ऊपर है, जब आप उनके साथ जाते थे, जब आप वो वातावरण में लोगों के साथ बात करते हुए देखते थे, तो क्या पुष्कर भान जी ने लोगों पर भी ऐसा ही प्रभाव डाला था?
1: हाँ बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि लोगों पर एक ऐसा प्रभाव था कि जो लोग हैं उनको लगता था कि एक ऐसे माध्यम है, ये एक ऐसी आवाज़ है कि उनकी जो परेशानी हो, उनका कोई ऐसा काम जो कहीं हो नहीं रहा हो, सरकार से नहीं हो रहा हो, चाहे पर्सनल नहीं हो रहा हो, कि ये मामा जी है जिसके थ्रू होगा। तो मैं तो ये बोलूँगा कि उस टाइम पे शायद मैं 4-5 साल का बच्चा नहीं समझ पा रहा था, पर बाद में जाके और अब जाके मैं उस चीज़ को जब रिलेट करता हूँ आज की टाइम से या जनरेशन से, तब मुझे लगता है कि वाकई में वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि मतलब जो उन्होंने छाप छोड़ी है, उसी छाप का ये असर है कि आज 100 साल के बाद भी चाहे उनकी जनरेशन हो या मेरी जनरेशन हो और आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, उनको याद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस लीजेंड की लीगेसी हमेशा आगे भी चलती रहे।
0: एक कलाकार, निर्देशक और प्रसारक के रूप में घर का माहौल में उनकी क्या भूमिका रहती थी? जैसे आपने अभी बात की
1: जी,
0: तो घर में क्या वो मचामा थे या एक साधारण से घर के बड़े व्यक्ति थे?
1: घर में एकदम मैं ये बोलूंगा कि उनका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ टोटली डिफरेंट, कि रेडियो पे उनका जो किरदार, या जब मैं बाद में उनके कुछ नाटक सुनता था रेडियो के, तो मैं कहता था कैसे उसमें हंसा रहे हैं लोगों को, कैसी ऐसे आवाज़ें निकाल रहे हैं, और घर पे एकदम नॉर्मल रहते थे। इवन जैसे आप जूंडब भी अगर सुनेंगे तो जूंडब में जो उनका रोल है एक हाउस सर्वेंट का है
0: जी,
1: और वो थोड़ा तुतला के बोलते हैं।
0: ओके,
1: तो मैंने कहा ये तो घर पे तो ऐसा कभी नहीं बोलते और वहाँ पे ऐसा बोलते हैं,
0: ये उनकी कला,
1: ये उनकी कला थी। मचामा में आप देखेंगे अलग अलग सी आवाज़ें निकालना, एंड हमेशा वो कुछ ना कुछ लिखेंगे, नोट करेंगे, उनकी एक डायरी होती थी साथ में, पेपर होता था, जहाँ उनको कुछ दिखे वो बस नोट कर देते थे और कहीं ना कहीं फिर उसको अपने वो रेडियो के प्रोग्राम में कहीं लाते थे। खासकर जैसे घर के कुछ कोई भी छोटी छोटी चीज़ हो, उस समय कोई इतना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर अगर आप उनके प्रोग्राम में सुनेंगे, जैसे मचामा सीरीज़ है 60-70s की है, उसमें हेलीकॉप्टर की आवाज़, एक दूसरी दुनिया में एलियन की आवाज़, या कुछ वैसा स्पेस क्राफ्ट की आवाज़ निकालना, जो अवेलेबल चीज़ें होती थी उनसे बनाते थे। तो वो भी एक ऐसी कला है जो आजकल शायद अब टेक्नोलॉजी ने उस चीज़ को चेंज कर दिया।
0: जी, सभी श्रोताओं को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आप ये सामुदायिक रेडियो FM 90 रेडियो विदस्ता सुन रहे हैं, इसको चलाने वाली संस्था है वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अम्बाला। हम भी थिएटर और मंच से जुड़े हैं। मैं बहुत अच्छी से समझ सकता हूँ कि रेडियो जब नाटक हम तैयार करते हैं उसको एडिट करना कितना मुश्किल है, हम स्टेज पर जब नाटक करते हैं वो इतना मुश्किल दर्शाना नहीं है, जबकि रेडियो पर उसको एडिट करके तैयार करके आप तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। जैसे अब तो हमारे पास इंटरनेट से सारी आवाज़ें मिलती, चाहे आपको गाड़ी की सायरन की आवाज़ मिले, चाहे आपको भैंस की आवाज़ मिले, चाहे कोई भी, पर उस ज़माने में जैसे दीपक जी कह रहे हैं तो ये तो एक बहुत ही कला की बात थी। दीपक जी, अब हम बात करते हैं कलात्मक योगदान और कश्मीर रेडियो की, रेडियो कश्मीर श्रीनगर की। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कश्मीरी कला, रंगमंच और रेडियो प्रसारण के स्वर्ण युग में आपके दादाजी का जो योगदान रहा, उससे आप किस रूप में देखते हैं?
1: जितना उन्होंने, जैसा कि शुरू में भी बताया गया था कि एक ऐसी एक सन ऑफ सॉइल की उन्होंने जिंदगी जी है
0: जी।
1: जैसे कि आपको पता ही होगा, जब वो शुरू में उन्होंने अपना रंगमंच या नाटक शुरू किया
0: जी,
1: वो बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे में उनको जॉब मिली, वहाँ पे उनको थिएटर में चले गए, अपना इप्टा के उर्दू सेक्शन के सेक्रेटरी बने, हिंदी मूवी दरवाजा में उनको ऑफर मिला था, और भी बहुत सारे उस समय के जो कलाकार थे, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर जी, बलराज सहनी जी, सबके साथ उनको मौका मिला काम करने का। पर वो वापस अपना कश्मीर आए, श्रीनगर आए, और उनको लगा कि मेरी एक्चुअल जो मेरा काम है यहाँ कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ पे करना है। तो एक ऐसा इंसान जो बॉलीवुड को भी छोड़ के कश्मीर में आ जाए, और उसके बाद एक रेडियो में रहे, रेडियो प्रोग्राम में रह के उन्होंने जो अपनी एक विरासत, अपनी धरोहर बनाई, वो एक ये है कि काबिल तारीफ तो है ही है, बट उतना आसान भी नहीं है। और साथ में उनके जो एक ड्रीम्स थे, बोलूँगा अगर, एक्टिंग के थे, वो भी उन्होंने साथ में कर लिया। उन्होंने जो मूवीज़ में काम किया, मोइंजरात में, शायर आजम कश्मीर महजूर में, और बहुत सारे स्टेज प्लेज, तो अपना उन्होंने वो भी साथ साथ में चलाते रहे। और अब पूरे 100 साल के योगदान में अगर हम उसको देखें, एक समरी के रूप में देखें, तो एक ऐसी चीज़ है कि उनका जो एक एम था कि सबको हंसाना है, ज़िंदगी एक ऐसी है कि हंसते हंसते ही निकलनी चाहिए
0: जी।
1: वो उनका मेन रहा था, ह्यूमर, ह्यूमर, सटायर, जो उन्होंने हर चीज़ में डाल के रखा था
0: जी। दीपक जी, रेडियो और थिएटर के प्रति उनके समर्पण का कोई ऐसा किस्सा जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सकती है?
1: आजकल का यही कि आजकल की युवा पीढ़ी, जैसे जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास अब रिसोर्सेज हो गए हैं, पर यही मैं कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी है
0: जी,
1: कि जिस चीज़ पे आप अड़े हैं, जो आपने करना उस पर करते रहिए, सफलता मिलेगी आपको, उसका फल मिलेगा। जैसे पुरानी कहावत है, इंतज़ार का फल मीठा है
0: जी।
1: तो आजकल की जनरेशन चाहती है हमको बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाए, शॉर्टकट कैसे ले लें, जल्दी से जल्दी कैसे कामयाबी मिले, बट अगर उनका एग्जाम्पल देखा जाए, ये सारी चीज़ें टाइम लेती हैं, बट उसके बाद जो फल मिलेगा वो ऐसा मिठास देगा कि दुनिया याद रखेगी। और जैसे हम आज उनको याद कर रहे हैं, वैसे सब आपका काम, कार्य, कला, सबको याद करते रहेंगे।
0: बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को खास करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि तरक्की और जिंदगी में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो क्या आप इससे सहमत हैं?
1: एकदम एकदम सहमत है।
0: अब हम बात करते हैं विरासत को जीवित रखने के प्रयास, खास करके ये दीपक जी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आप अपने काम में इतने व्यस्त है और उसके बावजूद भी आप अपनी जो दादाजी की विरासत है, जो उन्होंने काम किया है, जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, आप उनके संपर्क में है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको आशीर्वाद भी देते होंगे, क्योंकि दीपक जी पुष्कर जी के पोते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दादाजी के नाम और उनके महान कलात्मक कार्यों को जीवित रखने के लिए आपने और आपके परिवार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए?
1: जैसा कि हम सबको पता है, एक 100th सेंटेनरी ईयर चल रहा है उनका
0: जी।
1: तो जो परिवार, एक जैसे मैं बताऊंगा, दादाजी का जो परिवार, उनके एक बेटा जो मेरे पिताजी थे, वो अभी रहे नहीं है, वो भी सर्गवास हो गए हैं
0: जी।
1: और उनकी एक बेटी जो मेरी बुआ है, वो दिल्ली में सेटल्ड है, तो ये उनका परिवार है। एंड उनके जो बच्चे, या मेरी बुआ के बच्चे, और मैं हो गया इस साइड से, मेरी मदर जो साथ में है मेरे, और जो अपना छोटा सा परिवार है। तो हमने डिसाइड किया इस साल में कि इस 100th सेंटेनरी ईयर को कैसे एक स्पेशल बनाया जाए
0: जी,
1: क्योंकि एक उनकी लीगेसी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लीगेसी कहीं ख़त्म हो जाए, रुक जाए, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सारी मिसालें हैं इसमें। तो सारे परिवार ने फिर बोला कि इसको कुछ हमें ऐसा करना चाहिए इस साल में कि ये इनकी जो काम है, इनके बारे में जो है, अभी तक तो सबको पता है, पर आगे जाके कैसे पता रहे, उसके बारे में कुछ हमने सोचा। और टेक्नोलॉजी अब ऐसी है कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उस पर इनके बारे में, इनके काम को डालेंगे, इनके बारे में डालने से वो चीज़ें एक डिजिटलाइज फॉर्मेट में भी रह रही हैं, कि कल को अगर कोई दूसरी जनरेशन भी इनके बारे में जानना चाहे, तो कहीं भी इंटरनेट पर सर्च मारेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में निकल आएंगी जो अभी तक शायद नहीं थी। हालांकि वैसे भी बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी है इनके बारे में, बहुत लोगों ने लिखा है, या आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बट फिर भी एक फैमिली की तरफ से बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद ओपन सोर्स में, ओपन इंटरनेट पर पता नहीं होता है
0: जी।
1: तो सारे मेरे जितने भी जो मेरी बुआ है, जो उनके मेरे उफा जी हो गए, मेरे कज़न्स हो गए, और मेरी वाइफ, बाकी बच्चे, सबका योगदान है, मदर का भी जितना उनके साथ रही हैं, तो इन सबके योगदान से इन्होंने, पूरे फैमिली मेम्बर्स ने, एक उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं जिसमें उनके जो है कार्य को दर्शाया जाता है। एंड वहाँ से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जिनको पता नहीं था इस बारे में, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हर जगह से आ रही है, और ये कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। ये पूरा साल हम एक मना रहे हैं ईयर ऑफ सेंटेनरी फॉर द ट्रिब्यूट टू श्री पुष्कर भाट जी।
0: यानी कि आप कोशिश ये करते हैं कि जो उनके काम है, जो उन्होंने अपना योगदान अपने राज्य को, अपने देश को दिया है, आप चाहते हैं कि जितने भी युवा और बाकी लोग हैं, उनको उनसे, उनके काम से प्रेरणा मिले
1: जी। एकदम
0: आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उनके नाटकों, रेडियो स्क्रिप्ट्स या साहित्यिक कृतियों को सहजने और डिजिटल रूप में संरक्षित करने की कोई योजना बनाई गई है? क्या उनके जो लिखे हुए जो स्क्रिप्ट्स है, क्या आप लोगों ने उसको डिजिटल रूप में आपने तैयार करने की कोशिश की है या चल रही है?
1: इसमें जो है उनके जो पुराने स्क्रिप्ट्स थे, जैसा कि आपको पता है कश्मीर से निकलने के बाद जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह उनकी थी जुंडा की मचान, वो खत्म हो गई हैं क्योंकि वो मिल नहीं रही हैं, थोड़े से कुछ पीछे फ्लड्स में चले गए थे। तो किसी किसी के पास जो हमारे साथ श्रोता जो जुड़ते रहते हैं, कहीं से सुनते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू, जिनके पास कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं वो हमको भेज रहे हैं, वो अपलोड हो जाती हैं इंटरनेट पे भी और बाकियों को भेजा जाता है। एक तो वो तरीका उसको डिजिटाइज करने का रहा। उनके जो काम का था, जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखे थे, दुनिया भर के नाटक लिखे थे, प्रोग्राम लिखे थे, उसमें जो जो अवेलेबल है, हालांकि मैक्सिमम चीज़ें वो अपना उर्दू और कश्मीरी में लिखते थे एंड लिपि वो रहती थी उर्दू लिपि, तो हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखते थे। तो वो कुछ कुछ जो उनके नाटक है, कुछ जो उनके स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं हमारे पास, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक बार ट्रांसलेट भी करें हम हिंदी और इंग्लिश में, और साथ ही साथ उसको एक डिजिटलाइज्ड फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड भी करें, ताकि जो है पूरी सारे आवाम, सारी दुनिया उनको पढ़ सके,
0: उनके हाथ के लिखे हुए स्क्रिप्ट्स हैं वो भी पढ़ सके,
1: उनके हाथ के खुद के हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स हैं जो कि उन्होंने 1950s और 60s में लिखे हैं
0: जी।
1: तो अभी तक वो एक रजिस्टर्स और फाइल्स प्रिजर्व करके हैं
0: जी।
1: एंड उसको तो मैं ये बोलूंगा इट इज अ ट्रेजर, एक ऐसा एक ट्रेजर है वो, कि वो जब बाहर आके उनको लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि एक राइटर की उसमें फीलिंग्स, इमोशंस और कैसे करेक्टर को एक आगे बढ़ाते हैं
0: जी। मैं इसके साथ आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, जब कोई भी डेटा, कोई भी डॉक्यूमेंट डिजिटाइज होता है तो वो हजारों साल के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा, जो आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी
1: सारी
0: वहां तक रहेंगी, क्योंकि जो हमारे पास किताब में या कॉपी में जो स्क्रिप्ट लिखा है वो कहीं पढ़ा नहीं जा सकता है, बट अगर वो डिजिटाइज रूप में जाता है तो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है
1: जी। जी,
0: इस कार्यक्रम के अंतिम रूप में कुछ और जानकारी मैं आपसे चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए, उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर क्या कोई विशेष ट्रस्ट, डॉक्यूमेंट्री, पुस्तक या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है?
1: जी, अभी तक जो प्लान है वो ये प्लान है कि 21 नवंबर को जम्मू में अभिनव थिएटर में उनका एक प्रोग्राम रखा जा रहा है
0: जी,
1: जो कि अपना जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर एकेडमी
0: की
1: ओर से भी वो कोलैबोरेट कर रहे हैं साथ में
0: जी।
1: एंड उसमें ये है कि उनके बारे में जो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, कुछ पुराने आर्टिस्ट हैं वो उसमें शामिल होंगे, इनके जो काम है तो उसको थोड़ा हाईलाइट कराया जाएगा, और इनकी जीवनी पे एक बायोपिक मूवी भी बन रही है तो उसको भी शायद उसमें हम पेश करेंगे
0: जी।
1: तो ताकि मैक्सिमम लोग इसमें जुड़ें, मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज़ें जाएँ, मैक्सिमम लोग इस चीज़ों को देखें और सबको ये जानकारी मिल जाए उनके बारे में।
0: दीपक जी, अगर कशिर पेट कात करो तो हिंदी दादा जी इमजन गरस मंस या पनन कम इस करा कशिर जबीन मंस कित कैन करियो तो पनन दादा जी याद
1: बुमारा तो बस के तिमसक हित शख्सियत के खली है गुदबे के नमन गए सासुन इथे नफरन
0: जी
1: के वंचुस बुति हुन सु पूर कम उछान तीन रिकॉर्डिंग बोजान और छुवन तरन फिक्री की
0: श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाई जाए ताकि हमें उससे प्रेरणा मिल सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 साल के बाद भी हम उनके काम को देख रहे हैं, उनके काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ तो जरूर था जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, लाना चाहिए। आखिर में दीपक जी, मैं आपसे भावी पीढ़ी के लिए संदेश के रूप में आपसे जानना चाहूंगा कि नई पीढ़ी के रेडियो कलाकारों, थिएटर निर्देशकों और प्रसारकों के लिए आप अपने दादाजी के जीवन से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: उनके जो जीवन का पूरा एक संदेश ये है कि मेहनत का कोई और ऑप्शन या कोई और सेकंड शॉर्टकट नहीं है
0: जी।
1: मेहनत करनी है, उसका सफल आपको मिलेगा, और लोगों के लिए करना है। अपने लिए तो हम सब करते ही हैं
0: जी।
1: पर जहाँ पे हम लोगों के लिए करते हैं, लोगों को जो पसंद है, चाहे उनकी समस्याएं हो, चाहे उनको हंसना हो, चाहे उनको भावुक होना हो
0: जी।
1: जब हम उनकी फीलिंग्स को समझ के उनके लिए कुछ करते हैं और उनके जो ब्लेसिंग्स होती हैं, शायद उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। बाकी अवार्ड्स तो मिलते रहते हैं सबको, बट एक लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो एक ऐसी चीज है, अगर आपने वो कमा ली तो शायद
0: सबसे बेस्ट अवार्ड वही है। दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आज पहली बार आए
1: जी,
0: पहला दृश्य आपको यहाँ का कैसा लगा और आपको यहाँ आके कैसा लगा, हम ये जानना चाहेंगे।
1: मेरा ये पहला एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी रेडियो स्टूडियो में खुद ऐसे आना, हालांकि देखा तो था मैं जब मैं जाता था अपने दादाजी के साथ भी
0: जी,
1: लेकिन आज एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक उस शख्सियत के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, रेडियो के महान कलाकार, और रेडियो से ही आज एक उनके बारे में एक ट्रिब्यूट जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, तो शायद इससे अच्छी और कोई कनेक्शन हो नहीं सकता है कि एक रेडियो पर्सनैलिटी के लिए रेडियो से उनके बारे में मैसेज जा रहा।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि हम खुशनसीब है, रेडियो विदस्ता का पूरा परिवार, रेडियो विदस्ता की टीम, हम खुशनसीब है कि एक ऐसे रेडियो कलाकार की हम आज बात कर रहे हैं। शायद हमारा वजूद भी तभी हुआ है जब रेडियो एक जमाने में और आज भी प्रासंगिक है, और आज भी लोग अपनी जो एंटरटेनमेंट है उसको काम करते हुए रेडियो को सुनते रहते, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हम गाड़ी में सफर कर रहे हो, और आज के जमाने का डिजिटल रेडियो है जो आप रेडियो पे तो सुनते ही हैं, साथ में आप इंटरनेट के माध्यम से भी उसको सुनते हैं। खैर दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू भरत जी, एंड पूरी रेडियो विदस्ता टीम को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि जिनकी वजह से हम आज ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: नमस्कार।
2: आई एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड भूषण लाल भाम AVSM VSM फील ऑनर्ड टू गिव माय तासुरात इम्प्रेशन अबाउट माय अंकल ने एल्डर ब्रदर हुम आई कॉल्ड पापा जी। I spent my childhood to college days with him from the age of 8 years as I, before I joined the Indian Air Force, as my parents had moved to Mumbai. Papaji, before joining the Radio Kashmir, went to Mumbai to stay with his elder brother, Pandit Dinanath Ban. Understandably, he established contact with Shri Prithvi Raj Kapoor and Shri Raj Kapoor and gave some memorable performances and dramas and plays. He was also offered roles in movies, but Son of the Soil refused and instead preferred to return to his hometown, Srinagar. A turning point in the career came when he joined Radio Kashmir. His first broadcast, which to my in my memory showed, was titled Nizasab Kontakak, while he acted as Kontakak. The show brought to him to the notice of the public. I have a wealth of information about this extremely talented, noble, and great human being. Sufficient enough to write a book on his activities and achievements. May God Almighty bless this noble soul in Vaikunth. Kabhi kabhi aise didavar paida hote hain, aur na hi apna बल्कि वतन का नाम भी रोशन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
3: साहित्य और कला के क्षेत्र में उनके इस अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उनकी अद्वितीय कलात्मक देन के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। पद्मश्री 1974। कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976। उनके महान साहित्य कार्य और नाटकों के लिए नीटा ICCE अवार्ड 1985। कला और प्रसारण में श्रेष्ठता के लिए सादिक मेमोरियल अवार्ड, और इसके अलावा भी कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें प्रदान किए गए। इतने सारे सम्मान ये दर्शाते हैं कि पुष्कर भानजी का योगदान सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश ने उनकी प्रतिभा को सराहा। रेडियो के अलावा उन्होंने अभिनय जगत में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। सुपरहिट कश्मीरी फिल्मों मजरात और शायरे कश्मीर महजूर में उनके अभिनय को आज भी शिद्दत से याद किया जाता है।
0: अक्टूबर 2008 में ये महान कलाकार इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज भी रेडियो के आर्काइव्स और देशवासियों और कश्मीरियों के दिलों में उनकी वो खनकती हुई आवाज गूंजती है। एक फनकार कभी नहीं मरता, वो अपनी कला में हमेशा जिंदा रहता है। किसी शायर ने ऐसे ही महान फनकारों के लिए कहा है, आवाज मेरी मेरे बाद भी गूंजेगी फिजाओं में, मैं वो नगमा हूं जो कभी पुराना नहीं होता। इतने सारे सम्मान ये दर्शाते हैं कि पुष्कर बांझी का योगदान सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश ने उनकी प्रतिभा को सराहा। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम विस्तृत कार्यक्रम इस महान व्यक्तित्व पर आपके समक्ष फिर लाएंगे। ऐसी ही किसी अन्य दिलचस्प दास्तान के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक आप सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। और इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे इजाजत।
3: मुझे अच्छा लगा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनके, और अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
0: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे एक श्रद्धांजलि स्वरूप स्पेशल प्रोग्राम एट्रिब्यूट टू पद्मश्री श्री पुष्कर वांजी। प्रोग्राम प्रस्तुत किया भारत सोपोरी और अनु ने। विशेष धन्यवाद श्री दीपक बांजी का। सहयोग आरजे किरणी का। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा ही देश का भविष्य। आज के आमंत्रित मेहमान हैं श्रुति सयाल, विशेष आभार ईशान खन्ना, सहयोग आरजे गिरनी, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

0: नमस्कार, प्रणाम और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हमारे खास प्रोग्राम युवा ही देश का भविष्य में एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो न केवल तकनीक की दुनिया में माहिर है बल्कि कला और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक चमकता सितारा है। हमारे साथ हैं श्रुति सयाल, जो वर्तमान में बिजनेस एनालिस्ट हैं और साथ ही अपनी MCA की पढ़ाई भी कर रही हैं। श्रुति, आपका रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भारत जी, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस रेडियो स्टेशन पर आऊं और अपने विचार प्रकट करूं। धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: श्रुति, आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं और बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका काम असल में है क्या।
1: मेरा काम असलियत में ये है कि हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारा बिजनेस ये है और हमें इस बिजनेस को डिजिटल करना है, अपनी एक वेबसाइट बनवानी है, हमें टेक्निकल वर्ल्ड में कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, अपना प्रमोशन करा सकते हैं सोशल मीडिया पर, गूगल पर और भी बहुत से स्थानों पर, जिससे वो अपनी मार्केटिंग कर सके और उनका बिजनेस बढ़ सके। तो हम उनके सिनेरियो को देखते हुए जो भी जिस भी कंडीशन में वो लोग हैं उनको सजेस्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उनसे कम्युनिकेशन के बाद हम एक सॉल्यूशन पर आते हैं और उसके साथ हम आगे जाते हैं।
0: आपसे जानना चाहूंगा, जब आप कोई भी समाधान देते हैं किसी क्लाइंट को, तो आप उनसे क्या क्या जानकारी पहले लेते हैं ताकि आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकें।
1: हम बेसिकली उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं कि क्या वो एक रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक हैं या फिर उनकी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। उसके अकॉर्डिंग हम उनकी एक रिक्वायरमेंट को एक गैदर करके एक प्रपोजल बनाते हैं, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट की उनके बिजनेस को क्या क्या डिजिटली प्रेजेंस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या उन्हें वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है या फिर उन्हें ऑनलाइन प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है। उसके अकॉर्डिंग हम एक स्कोप ऑफ वर्क बनाते हैं, उनकी वेबसाइट में क्या क्या होगा, क्या हम उन्हें डिज़ाइन कैसा देंगे, किस टेक्नोलॉजी में उनकी वेबसाइट बनाएंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे, फिर उनकी वेबसाइट को सर्वर पर डिप्लॉय कर देंगे। अगर वो मार्केटिंग में चाहते हैं तो हम उनकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करेंगे या फिर हम गूगल पर उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे।
0: आप एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम करती हैं, तो आपने पढ़ाई खत्म करने के बाद अब आप जॉब करती हैं, तो एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर जब आप किसी भी क्लाइंट को समाधान देते हैं तो दिल में मन में कितनी संतुष्टि होती है।
1: बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है। मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं चाहती तो अपनी कोडिंग करियर भी परस्यू कर सकती थी आगे, पर मैंने ये प्लेटफॉर्म बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन इसलिए चुनी जिससे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, उन्हें एक समाधान दे सकूँ अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं।
0: श्रुति, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपसे अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त सा इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे श्रोता आपको और अच्छे से जान सके।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यंग जनरेशन से बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ फॉर श्योर, बहुत थैंक यू सो मच। बट अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊँ तो ये है कि मेरा नाम श्रुति है, मैं 22 साल की हूँ, अम्बाला में रहती हूँ और एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ। जस्ट मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई थी लास्ट ईयर और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज में वर्क करने की। एज एन इंटर्न मैं वहाँ पर गई थी, उसके बाद मैंने कोडिंग में अपना पैर जमाया, कोडिंग सीखी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट पूरी करी, बट वो कहीं ना कहीं जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, मेरे कॉलेज टाइम का, मेरे स्कूल टाइम का, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े रहे और वहाँ की कंपनी के बॉस ने मुझे मौका दिया कि क्यों ना आप अपने स्किल्स को आगे और कंटिन्यू करो और हमारी कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट रोल परस्यू करो। तो उसके साथ ही मैं आगे अब बढ़ती जा रही हूँ और इसी को आगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आगे बढ़ाऊंगी।
0: बहुत खूब। श्रुति, मैंने सुना है कि आप थिएटर यानी रंगमंच से भी जुड़ी रही हैं, स्ट्रीट प्ले और वन एक्ट प्ले का अनुभव आपके प्रोफेशनल करियर में कैसे काम आता है?
1: स्ट्रीट प्ले हो या वन एक्ट प्ले, हर जगह पर आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। हमें कुछ भी लाइफ में करना है उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, क्लाइंट से नहीं तो अपने कलीग से बात करती हूँ, डेवलपर से बात करती हूँ, डिज़ाइनर से, टेस्टर से, किसी भी इंसान से मैं बात करती हूँ, तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सामने वाले के सामने हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। हो सकता है कि हमारी नॉलेज बहुत अच्छी हो, बट अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस बात को बोलने का, तो शायद हम उतने अच्छे से काम ना कर पाए। तो हाँ, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है या फिर मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, तो ये जस्ट बिकॉज मैं थिएटर में थी, मेरे कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ।
0: श्रुति, जहाँ तक रंगमंच का सवाल है, रंगमंच हमेशा हमें एक अच्छा इंसान बना देता है, हमें वो एज अ पर्सन ग्रो होने का मौका देता है, हमें बोलने का कॉन्फिडेंस देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप थिएटर के साथ जुड़ी हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हैं, तो ये आपके करियर में आगे भी बहुत सारा हेल्प करता रहेगा। आपके लिए संगीत क्या मायने रखता है?
1: संगीत मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप अपनी फैमिली में होते हो या अपने आप जॉब पर होते हो, कहीं पर भी होते हो, आप एक सिनेरियो में एक सीक्वेंस के साथ आप काम करते रहते हो, तो माइंड में बहुत सी चीज़ें आ जाती है। तो एक अच्छा म्यूज़िक जो होता है आपको टेंशन फ्री करता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जैसे सॉफ्ट म्यूज़िक हम सुनते हैं या फिर पार्टी म्यूज़िक सुनते हैं, वो एकदम से मूड स्विच कर देता है।
0: तो आप मानते हैं कि म्यूज़िक एक थेरेपी हमें देता है? और अगर ऐसा है तो आप किस तरीके का संगीत सुनते हैं? आपकी पसंद का कोई भी गीत हो जो हम श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, कृपया बताएं।
1: मुझे वैसे तो बहुत से सॉन्ग्स पसंद है, बट स्पेसिफिकली मैं रेट्रो म्यूजिक भी सुनना पसंद करती हूँ। तो उसमें मुझे लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, ये वाला गाना बहुत पसंद है।
0: आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी बिल्कुल,
0: प्लीज
1: लिखे।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। हम आज इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्रुति सयाल से। इस कार्यक्रम का नाम है युवा ही देश का भविष्य। हमें बहुत अच्छा लगता है युवाओं से बात करने, ताकि हम ये जान सकें कि वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं और देश के लिए वो क्या कुछ करना चाहते हैं। श्रुति से अगला प्रश्न पूछते हैं। श्रुति, आप रोटरैक्ट क्लब के सचिव भी रही हैं, एक लीडर के तौर पर आज के युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
1: जैसे कि मैं 2022 से 2023 तक एक सेक्रेटरी के रोल में थी, उस रोल में ने मुझे सिखाया कि आपकी डेजिग्नेशन मैटर नहीं करती है
0: जी।
1: कि आप किस पोजीशन पे हैं
0: जी।
1: अगर आपके अंदर एक जील है, एक पावर है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। एक सिचुएशन उस टाइम पर ऐसी आई कि जो क्लब के प्रेसिडेंट थे वो अवेलेबल ही नहीं रहे काफ़ी टाइम तक, तो उस टाइम को ना घबराते हुए मैंने उस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, क्यों ना मैं एज अ प्रेसिडेंट काम करूं
0: जी।
1: मैंने पूरे क्लब को संभाला और उसी चीज़ ने आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, कॉन्फिडेंस दिया है, अपने ऊपर विश्वास इतना दिलाया है कि हाँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं सीनियर्स के साथ रहती हूँ, पर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जूनियर हूँ या मुझे एक साल हुआ है, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास है तो।
0: तो इसके साथ ही जुड़ता हुआ मैं प्रश्न आपसे करना चाहूँगा, जितने भी श्रोता हमारे आपको इस समय सुन रहे हैं, खास करके आप युवतियों को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं उन्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखें और लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। आप कोशिश करेंगे, छोटी से छोटी छोटी छोटी कोशिश करिए, ऐसा नहीं है कि आज ही आप बिल्कुल अच्छा आपको पैकेज मिल जाएगा या फिर आप बहुत अच्छे एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे, पर छोटी छोटी चीज़ों से कोशिश करिए। अपने आप को बाउंडेड मत रखिए कि हाँ कि अच्छा ऐसी कंडीशन है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत रखिए अपने जीवन में। हमेशा अपने आप के अंदर एक ऐसा जुनून रखिए कि नहीं, अगर जो गलत है तो गलत है और जो सही है वो सही है, और इसके साथ ही आगे बढ़ते रहिए।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे देश में युवा हो या युवतियां हो, आमतौर पर यह कहा जाता है कि देश की जो ताकत होते हैं वो देश के युवा होते हैं, और आज आपको जितने भी अवसर मिल रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कार्य करने के लिए, तो कितनी संतुष्टि होती है कि आप भी देश निर्माण में कार्य कर रही हैं।
1: बहुत संतुष्टि होती है अगर मुझे कोई सुन रहा है और मेरी बातों से किसी के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, या फिर अगर मैं कहीं पर भी हूँ, मैं अपने घर पर हूँ, मैं अपने पड़ोस में हूँ, मैं अपने वर्क प्लेस पे हूँ, कहीं पर भी हूँ, अगर मेरी बातों का किसी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझसे वो प्रेरित हो रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश के विकास पर भी इम्पैक्ट डालता है।
0: आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं, ये मैंने आपके डिटेल से पढ़ा है, और आपको घूमना बहुत पसंद है, क्या नए लोगों से मिलना और नए विचार साझा करना आपके भविष्य के लक्ष्यों में मदद करता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, और ये चीज़ मुझे मेरे जेनेटिक्स से मिली है, क्योंकि मेरे घर पे सभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, सबको ही बहुत पसंद है लोगों से बात करना, थॉट्स एक्सचेंज करना, बस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि आप उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपने एक्सट्रोवर्ट नेचर को इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि क्या हम किसी से क्या नॉलेज ले सकते हैं, किसका क्या थॉट प्रोसेस है, और वो मेरी जीवन में बहुत चीज़ काम आती है कि मैं आगे, और तभी मुझे पसंद भी है काफ़ी लोगों से बात करना, जैसे कि आज मैं आज आपसे मिली हूँ और आज मेरे आपसे थॉट एक्सचेंज हुए हैं, मुझे कुछ नया जानने को मिला है और मैं आपसे कुछ सीख कर ही जाऊंगी आगे।
0: अभी आपके करियर की शुरुआत हुई है, आपका इमीडिएट लक्ष्य क्या है?
1: मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, वो चाहे जिस भी जॉब रोल में मैं पूरा करूँ, मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हूँ, जो कि किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे, अपने फाइनेंसेस के लिए भी कमाना चाहती हूँ, जिससे मैं डोमिनेंस रहूँ या फिर मुझे कोई कुछ कह ना सके, मैं उनसे कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं घर के या बाहर के किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे बहुत नाजों से पाला है और बहुत फाइनेंशियल या फिर कंडीशन जो भी है उसमें मेरा हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी फैसिलिटी में, एंड कभी डिफरेंस भी नहीं किया मुझ में और मेरे भाई में. तो बस मैं यही चाहती हूँ, मैं जिसके साथ भी हूँ या फिर जिसके साथ अभी हूँ उनको फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ और आगे वो भी कह सके कि हाँ ये मेरी बेटी है.
0: श्रोताओं, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो बदलाव आ रहा है वो एक सोच का बदलाव आ रहा है. एक समय था जब महिलाएं किसी भी डिसीजन में उनका कोई रोल नहीं होता था. हम श्रुति से बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनका लक्ष्य है कि वो अपने फिनेंशियल डिसीजंस लें, अपने ज़िंदगी में, अपने परिवार में जो भी डिसीजंस हो उसमें उनका साथ होना चाहिए. अगर ये सोच श्रुति रखती है तो ये हमारे देश की हर एक युवती को रखना चाहिए ताकि वो फिनेंशियली स्टेबल हो, आने वाली जिंदगी उनकी अपने दिशा से हो, वो एंटरप्रेन्योर्स बने, वो लीडर्स बने, वो कंपनियों की शुरुआत करें और उन कंपनियों की सीईओ भी बने ताकि हमारा देश आगे बढ़े. और ये हम सबके लिए एक बहुत खुशी की बात है कि देश बदल रहा है. श्रुति, चलते चलते उन युवाओं के लिए कोई एक बात जो बीसीए या एमसीए कर रहे हैं और कॉरपोरेट दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे और साथ में क्या चुनौतियां हो सकती है और क्या फायदे हो सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि सब अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ रहे, फोकस्ड रहे, डिटर्मिनेशन, बस यही एक की है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी. हाँ, हो सकता है जैसे कि मैं भी बीसीए कर मैंने जॉब करी और मैं कॉरेस्पॉन्डेंस है एमसीए कर रही हूँ और उसके साथ साथ भी मतलब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी दिनचर्या कैसे मैनेज कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस से बिल्कुल आकर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता. बट स्टिल इसके बीच में भी मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे और भी कुछ करना चाहिए. तो मैंने पीएमपी सर्टिफिकेशन में भी अप्लाई करा हुआ. तो दिन आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, हैक्टिक हो जाएगा, बट जब आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, आपके हाथ में वो आपकी ड्रीम जॉब होगी या फिर जिस भी करियर में आप परस्यू करना चाहते हो वो जब आपके पास होगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ आई वॉज राइट. टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको यूटिलाइज़ करना और उसको फुलेस्ट यूज़ करना. ऐसा नहीं है कि अपनी इन्जॉयमेंट में भूल जाती हूँ उसके चक्कर में कि नहीं मैं पूरा दिन ही ऐसे जा रहा है या फिर मेरे वीकेंड्स ऐसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसा ही हमें वर्क प्लेस पर भी सिखाया जाता है कि लर्निंग कभी नहीं रोकनी चाहिए. लाइफ में हमेशा हर दिन आपको कुछ नया सीखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग. सो मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ तो हैक्टिक होगी बट जो भी आपको एंड में रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला. सो स्टे फोकस्ड, डिटरमाइंड.
0: इसके लिए मैं एक कोटेशन मैंने कहीं पढ़ी है तो वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने श्रोताओं से, वो ये है, थिंक बिग एंड एक्ट. आप बड़ा सोचिए और उस पर कार्य करिए, एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी. एक महिला होने के नाते ये बताइए कि कार्यस्थल जहाँ आप काम करती हैं, आवागमन या आप एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और डेली लाइफ में कितना सुरक्षित आप महसूस करती हैं एज अ वुमन?
1: मैं अपने वर्क प्लेस पर और जो भी रूट में लेकर जाती हूँ मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सेफ फील करती हूँ. इसके पीछे का रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई इंसान हमें सिक्योर या इनसिक्योर फील नहीं कराता है, शायद हम में ही उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम जहाँ पर भी है वहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली बैठे या फिर हम कॉन्फिडेंटली वर्किंग करें. तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई थर्ड पर्सन आके कुछ पोक कर जाएगा या फिर आपको कुछ इनसिक्योर अनकंफर्टेबल फील करा देगा, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता. बाकी देर इज़ अ सिचुएशंस, आती है सिचुएशंस, बट उसमें आपको कॉन्फिडेंटली एंड बोल्डली उसका रिप्लाई करना चाहिए. पर मुझे अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील होता है क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है और मेरा वर्कप्लेस काफी सेफ थी.
0: बहुत अच्छी बात कही श्रुति आपने. इस कार्यक्रम में जिसमें हम आज बात कर रहे हैं इसका नाम है युवा ही देश का भविष्य है और मुझे वाकई लग रहा है कि जब हम युवाओं से बात करते हैं हमें ऊर्जा भी मिलती है और हमारा देश आगे बढ़ता हुआ दिखता भी है. आज के इस कार्यक्रम में हमारी अतिथि श्रुति ने हमें बताया कि कैसे तकनीक कला और समाज सेवा को एक साथ साधा जा सकता है। श्रुति, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ अम्बाला कैंट के इस FM रेडियो स्टेशन पर आने के बाद आपको यहाँ आके कैसा लगा, और अंत में आप सभी सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मुझे इस रेडियो स्टेशन पर आकर बहुत अच्छा लगा कि मैंने सभी लोगों से बात करी, आपसे बात करी। मुझे पता चला कि लोगों का क्या थॉट प्रोसेस होता है, लोग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, क्या हम नया सीख सकते हैं। और इट इज़ लाइक नेवर एंडिंग गेम, आप जितना सीखते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। अगर एक लाइन में कुछ मैं संदेश देना चाहूँ, जैसे कि अभी हमारा न्यू ईयर मंथ भी चल रहा है, तो मैं उसमें बस एक ही बात कहना चाहती हूँ एक कोट में, जो बीत गया उसका क्या मलाल करे, जो बीत गया उसका क्या मलाल करे, अब जो हासिल है अब उसी से सवाल करे। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी बातों में दिन से रात करे, जो बीत गया उसका क्या मलाल करे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी युवा अपने विचारों को यहाँ पर आकर रखना चाहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो इस रेडियो स्टेशन पर आ सकते हैं मेरी तरह, और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं ताकि हम किसी का मार्गदर्शन कर सकें।
0: दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। यहाँ हर धड़कन में नई उमंग है, और आपको आज के मेहमान श्रुति के एक और गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं, और हम आपसे चाहेंगे इजाजत। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट करूंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा ही देश का भविष्य। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्रुति सयाल। विशेष आभार ईशान खन्ना। सहयोग आरजे किरणी। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 6। आज की फिल्म है काला पत्थर। कार्यक्रम पेश करेंगे राहुल अलियान। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान। लेकर आया हूं कार्यक्रम फिल्मी किस्से का एपिसोड 6 और पहली बार मेरी आवाज में। उम्मीद करता हूं आपको ये अंक अच्छा लगेगा। इस प्रोग्राम में हम बॉलीवुड की कोई मशहूर फिल्म का चयन करते हैं जिसके फिल्मी किस्से आपको सुनाते हैं और इसी फिल्म के गीत भी। आज हम बात करेंगे फिल्म काला पत्थर की। फिल्म काला पत्थर जो 1900

1979 में बनी थी, जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था। हिंदी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, नीतू सिंह और प्रवीण बाबी जैसे बड़े सितारे थे। फिल्म की कहानी कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी और उनके संघर्षों पर आधारित थी। आइए सुनाता हूँ इसी फिल्म का एक मशहूर गीत, उसके बाद इसी फिल्म के फिल्मी किस्से भी। बने रहिए हमारे साथ।

अमिताभ बच्चन का किरदार विजयी एक ऐसा इंसान था जो अपने अतीत के बोझ से जूझ रहा है। यह किरदार वास्तविक जीवन में चासलाना खदान दुर्घटना जो 1975 में हुई थी से प्रेरित बताया गया था। इस घटना में सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई थी। फिल्म की कहानी उस दर्दनाक घटना और मजदूरों के जीवन संघर्षों को दिखाने की कोशिश करती है।

कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच असल जिंदगी में कुछ अनबन थी, लेकिन फिल्म के दौरान उन्होंने पेशावर तरीके से काम किया। यह पहली बार नहीं था जब अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म में उनकी बॉन्डिंग को खास सराहा गया। सेट पर भी इनके बीच का दोस्ताना माहौल चर्चित रहा।

काला पत्थर एक आलोचनात्मक सफलता थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हालांकि समय के साथ इसे एक क्लासिक फिल्म माना गया। फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने असली कोयला खदानों का इस्तेमाल किया। शूटिंग धनबाद और आसपास के इलाकों में हुई, जिससे फिल्म को एक प्रमाणिक लुक मिला। कोयला खदानों में शूटिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वहां का माहौल बेहद कठिन था।

गाने उतने लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन इसके डायलॉग जैसे अमिताभ बच्चन का संवाद हमारे नाम से कोई बदनसीब जुड़ा है काफी मशहूर हुआ। फिल्म का संगीत राजेश रोशन ने दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार फिल्म की जान माना जाता है। उनके दमदार डायलॉग और अलग अंदाज दर्शकों को खूब भाया। कहा जाता है कि उनके किरदार को फिल्म में खास तौर पर जोड़ा गया ताकि मसाला एंटरटेनमेंट बढ़े।

काला पत्थर केवल एक ड्रामा फिल्म नहीं थी, यह मजदूरों की दुर्दशा और पूंजीपतियों के शोषण पर एक तीखी टिप्पणी भी थी। फिल्म ने समाज में मजदूर वर्ग की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। यह फिल्म आज भी उन दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती है जो समाज के जमीनी मुद्दों को सिनेमा के जरिए समझना पसंद करते हैं।

इसके साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ अगले एपिसोड में किसी और फिल्म के साथ। आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010 पर, या आप मेल भी कर सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से और आज की फिल्म थी काला पत्थर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राहुल अलियान ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 12। कार्यक्रम का शीर्षक है ममता। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने। एडिट किया निया जैन ने। स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता RJ किरनी।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और लेकर आई हूं रेट्रो हिट्स का एक नया अंक जिसका टॉपिक है ममता। उसकी ममता का कोई मोल नहीं, उसके प्यार से बड़ा कुछ और नहीं। दुनिया की दौलत भी फीकी लगे, माँ का आंचल अगर छोड़ नहीं।

एक मूरत जो मंदिर से प्यारी लगे, एक रोशनी जो ताजगी सारी लगे, वो कोई और नहीं बस माँ ही तो है, जिसकी ममता हमें सबसे न्यारी लगे।

पहलू और गीत का आज का अंक लेकर मैं किरणी फिर से हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सावन के महीने के बारे में।

0: हेलो और गीत का आज का अंक लेकर मैं किरणी फिर से हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सावन के महीने के बारे में।
1: बन्ना रे बागा में झूला डाला, बन्ना रे बागा में झूला डाला।
0: हिंदुओं के लिए सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इसे भगवान शंकर का महीना भी कहते हैं। मान्यता है सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर निवास करते हैं। उनको खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। सावन का महीना बारिश का भी होता है और मौसम बहुत ही सुहावना और ठंडा रहता है। गर्मी से राहत के लिए लोग घूमने का आनंद लेते हैं और खुशी से झूम उठते हैं।

0: सावन के महीने में बहुत अधिक बारिश होती है।
1: ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
0: और ये किसानों के लिए भी प्रिय महीना माना जाता है। हर तरफ हरियाली छा जाती है, किसानों को भी फसल के लिए बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बारिश से धरती मानो स्वर्ग सी लगती है और सुंदर दिखाई देती है।

सावन का महीना खुद में एक विशेषता लिए हुए है। ये प्रकृति को तो सराबोर करता ही है, साथ ही मन को भी भिगो देता है। सावन का ये महीना मनुष्य पशु पक्षी सबके लिए खुशहाल मौसम लेकर आता है। आज शाम जब बरसा सावन, भीगा अपना तन मन सारा।

सावन के महीने में महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार भी पड़ती हैं। उनमें से रक्षाबंधन और हरियाली तीज मुख्य त्यौहार है। हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। आप सबके लिए तीज के अवसर पर ये प्यारा सा गीत।

तीज का त्योहार हो और मेहंदी ना हो। मेहंदी के बिना तीज का त्योहार या सावन अधूरा है। तीज के दिन मेहंदी लगाने का भी एक विशेष महत्व है। मेहंदी का इस्तेमाल शरीर की गर्मी दूर करने के लिए किया जाता है। माना जाता है हरा रंग, जो मेहंदी का रंग है, कई रोगों के रोकथाम में भी कारगर होता है।

के दिन महिलाएं हरी चूड़ियां, हरे रंग का पोशाक पहनकर झूला भी झूलती है, क्योंकि जो हरा रंग है ये प्रकृति का रंग होता है और हरा रंग अखंड सौभाग्य का भी प्रतीक है। 16 श्रृंगार करके लोग गीत अथवा तीज के गीत गाकर उत्सव भी मनाती हैं, खुशी से झूम उठती हैं और मन मोर नाच उठता है।

सावन महीने में दूसरा महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वो रक्षाबंधन का आता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्यौहार। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और सुखी जीवन की प्रार्थना करती है।

रक्षाबंधन सबसे सुखद और सार्थक त्योहारों में से एक है। ये भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है।

न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार, चाहत बहन की इतनी कि बस बना रहे प्यार। गम न कोई पास में आए, खुशियाँ मिले हजार, न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार। इसके साथ ही आज के पहलू और गीत का समय समाप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 6। आज की फिल्म है काला पत्थर। कार्यक्रम पेश करेंगे राहुल अलियान। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान। लेकर आया हूं कार्यक्रम फिल्मी किस्से का एपिसोड 6, और पहली बार मेरी आवाज में। उम्मीद करता हूं आपको ये अंक अच्छा लगेगा। इस प्रोग्राम में हम बॉलीवुड की कोई मशहूर फिल्म का चयन करते हैं, जिसके फिल्मी किस्से आपको सुनाते हैं और इसी फिल्म के गीत भी। आज हम बात करेंगे फिल्म काला पत्थर की। फिल्म काला पत्थर जो 1979 में बनी थी, जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था, हिंदी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, नीतू सिंह और प्रवीण बाबी जैसे बड़े सितारे थे। फिल्म की कहानी कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी और उनके संघर्षों पर आधारित थी। आइए सुनाता हूँ इसी फिल्म का एक मशहूर गीत, उसके बाद इसी फिल्म के फिल्मी किस्से भी। बने रहिए हमारे साथ।

अमिताभ बच्चन का किरदार विजय एक ऐसा इंसान था जो अपने अतीत के बोझ से जूझ रहा है। यह किरदार वास्तविक जीवन में चासलाना खदान दुर्घटना जो 1975 में हुई थी से प्रेरित बताया गया था। इस घटना में सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई थी। फिल्म की कहानी उस दर्दनाक घटना और मजदूरों के जीवन संघर्षों को दिखाने की कोशिश करती है।

कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच असल जिंदगी में कुछ अनबन थी, लेकिन फिल्म के दौरान उन्होंने पेशावर तरीके से काम किया। यह पहली बार नहीं था जब अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म में उनकी बॉन्डिंग को खास सराहा गया। सेट पर भी इनके बीच का दोस्ताना माहौल चर्चित रहा।

काला पत्थर एक आलोचनात्मक सफलता थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हालांकि समय के साथ इसे एक क्लासिक फिल्म माना गया। फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने असली कोयला खदानों का इस्तेमाल किया। शूटिंग धनबाद और आसपास के इलाकों में हुई, जिससे फिल्म को एक प्रमाणिक लुक मिला। कोयला खदानों में शूटिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वहां का माहौल बेहद कठिन था।

गाने उतने लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन इसके डायलॉग जैसे अमिताभ बच्चन का संवाद हमारे नाम से कोई बदनसीब जुड़ा है काफी मशहूर हुआ। फिल्म का संगीत राजेश रोशन ने दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार फिल्म की जान माना जाता है। उनके दमदार डायलॉग और अलग अंदाज दर्शकों को खूब भाया। कहा जाता है कि उनके किरदार को फिल्म में खास तौर पर जोड़ा गया ताकि मसाला एंटरटेनमेंट बढ़े।

काला पत्थर केवल एक ड्रामा फिल्म नहीं थी, यह मजदूरों की दुर्दशा और पूंजीपतियों के शोषण पर एक तीखी टिप्पणी भी थी। फिल्म ने समाज में मजदूर वर्ग की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। यह फिल्म आज भी उन दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती है जो समाज के जमीनी मुद्दों को सिनेमा के जरिए समझना पसंद करते हैं।

इसके साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ अगले एपिसोड में किसी और फिल्म के साथ। आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010 पर, या आप मेल भी कर सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से और आज की फिल्म थी काला पत्थर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राहुल अलियान ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

मैं हूं रमेश मराठा। मेरे पास से गुजरकर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए।

से घूमते घूमते जब ये आवारा बादल टूट जाते हैं तो हम यहां भीग जाते हैं। खुशनुमा माहौल चारों ओर नजर आने लगता है। जन्नत जैसा एहसास हम महसूस करते हैं और सिखा जाती हैं ये मासूम हवाएं जीने का

ये चाहती कभी बुरी नहीं होती हैं। नई नवेली दुल्हन की तरह हमेशा जवान और पुरकशिश रहने का दावा करती हैं। तभी तो हर अंजुमन में तेरा जिक्र होता है खामोशी से। चुपचाप उतर जाती हो आंखों में आंसू की तरह।